अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, हर नई सुबह हमें ये संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, विश्वास और धीरज का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए।

बताओ आज 22 जुलाई 2026 बुधवार, विक्रम संवत 2083, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि की इस पवित्र प्रभात में आप सभी का हार्दिक

श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल पर। इसके अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही समय में हम अपने संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे यात्रा के हवाले से क्या सूरत हाल है और क्या सूचनाएं हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम अपने संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने जम्मू के संवाददाता जावेद महराब साहब से जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अभी उनसे रابطہ नहीं हो पाया। इसी बीच इस वक्त जो है हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं मोहम्मद तस्कीन साहब रामबन से। तो फिलहाल हम रामबन की ओर चलते हैं। तो मोहम्मद तस्कीन साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
0: जी। तस्कीन साहब, क्या सूरत हाल है? अगर हम रामबन की बात करें तो क्या मौसमी सूरत हाल है, अभी कैसा मौसम है वहां पर?
1: जी जबरदस्त बारिशें हो रही है, कल से बारिशें हो रही है, रुक रुक कर बारिशें हो रही है और मुसलसल हो रही है। तो इस वक्त भी जबरदस्त बारिशों का सिलसिला जारी है रामबन बारहाल सेक्टर में, और इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उस पर कई मुकामात पर जो स्लाइडिंग हुई है, पत्थर गिर आए हैं। लेकिन जो अभी कुछ वक्त पहले एसएसपी ट्रैफिक से बात हुई है तो उनका कहना है कि एक जो लेन है ट्रैफिक की, जो फोर लेन में से एक लेन है, एक सड़क का हिस्सा है, ऊपरी सड़क का हिस्सा जो पहाड़ी के नीचे से होकर जाती है, तो उस पर मुतअद्दिद मुकामात पर रामबन बारहाल सेक्टर में पत्थर गिर आए हैं, पस्सियां गिर आई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है एक ही लेन से अभी गुजारा जा रहा है। फिलहाल बारिशें हो रही है, और जैसा कि आपको मालूम है कि आज तीसरे दिन भी जो श्री अमरनाथ यात्रा है वो सस्पेंडेड है, और आज भी यात्रा को चलने की इजाजत नहीं है क्योंकि मौसमी खराबी की वजह से ये पिछले एतवार को फैसला लिया गया था, तो उस पर अभी भी अमल दरामद जारी है क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी है और मजीद जो बारिशें आइंदा एक रोज तक, कल तक भी बारिशों का कहा गया है 23 तारीख का कम से कम। तो फिलहाल बारिशें हो रही है और जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो एक ही जो ट्यूब से जहां पर भी स्लाइडिंग हुई है, लेकिन जिस तरह बारिशें हो रही है तो उससे लग रहा है कि बहुत जगहों पर, बहुत मुकामात पर शाहरा के पर स्लाइडिंग का इम्कान है, क्योंकि उधमपुर सेक्टर में जो नाशरी टनल और उधमपुर के जिखैनी के दरमियान देखेंगे तो कल भी उस इलाके में बहुत जगहों पर स्लाइडिंग हुई थी, लेकिन एक ही ट्यूब इसका इफेक्टेड हुआ था हाईवे को, दूसरी ट्यूब से ट्रैफिक को निकाला जा रहा था, और अगर बारिशों का यह सिलसिला जारी रहा तो हाईवे पर मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है।
0: जी जी, अगर हम घाटी की बात करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो समर वेकेशन है वो एक्सटेंड की गई है, चूंकि यहाँ पर भी बहुत तेज बारिशों का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। लेकिन इस बीच हम जानना चाहेंगे, क्या यात्री वहां कहीं पे रुके हुए हैं नेशनल हाईवे या किसी बेस कैंप वगैरह में अभी भी कोई यात्री रुके हुए हैं?
1: नहीं, हमारे पास जो रामबन में कहेंगे तो यात्रा निवास में और बानहाल में करीबन 1000 से जायद यात्री इतवार को ठहरे, शनिचर 2 बजे के बाद से रोका गया था, इतवार को भी वहां थे, सोमवार को भी, यहाँ पीर को कल, परसों, तो अब कल से वापस जाना शुरू हुए हैं बहुत सारे यात्री, और जो टूरिस्ट थे उनको, जो टूरिस्टों को रोका जाता है 2 बजे के बाद रामबन में और 3 बजे के बाद यहाँ

0: हाल में जो कश्मीर की तरफ आने वाले होते हैं, तो उनको रोका गया था। लेकिन जब उनने मौसम की तवालत देखी कि हाईवे पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी यात्रा को छोड़ा नहीं जाएगा, तो बहुत सारे यात्री जो रामबन में रुके हुए थे, 1000 में से बेशतर यात्री वापस निकल चुके हैं अपने मतलब यात्रा को छोड़कर वापस निकल गए, क्योंकि अभी 2 दिन और उनको रुकना पड़ता तो, क्योंकि बहुत सारों को छुट्टियां होती हैं, दफ्तर का दफ्तरों से छुट्टियां ली होती है, बच्चों की छुट्टियां होती है, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे यात्री वापस गए हैं। जबकि जो टूरिस्ट रोके गए थे कश्मीर जाने वाले, तो उन्हें बाद में इजाजत दी गई थी, उन्हें कश्मीर अपने अपने मंजिलें जो उनको थी उनको भेज दिया गया था। फिलहाल जो यात्रा है यहाँ पर कुछ इक्का दुक्का रुके हैं यहाँ बानहाल में, और कुछ रामबन के यात्रा निवास में रुके गए हैं, वो जो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा पवित्र गुफा की तरफ जाने का, तो वो अपना सफर दोबारा शुरू करेंगे।
1: जी, मौसम विज्ञान विभाग की अगर बात करें तो क्या कुछ उनकी तरफ से प्रेडिक्शन है, ताजा तरीन क्या पेशन गोईयां सामने आ रही है?
0: कल 23 तारीख तक महकमा मौसमियात ने बारिशों की और अच्छी खासी बारिशों की पेशन गोई कर रखी, और उसका जो पेशन गोई के ऐन मुताबिक है बिल्कुल, अगर देखेंगे तो कल भी बारिशें हुई, कल दिन भर बारिशें होती रही, तो वही सिलसिला आज भी जारी है, तो ऐसा ही कल के लिए भी कहा गया है, तो मजीद बारिशों का इम्कान है और बारिशें हो रही है। और अगर देखेंगे तो नदी नाले जो आस पास के है, जैसे रिवर दरियाई चिनाब है, उसमें भी पानी की सतह बढ़ गई है। इसी तरह जो दूसरे नदी नाले होते हैं उनमें भी पानी की सतह बढ़ गई है। यहाँ से जो नाला बिछलड़ी जाता है बानहाल से रामबन की तरफ, तो उसमें भी पानी की सतह बढ़ गई है, तो मौसम जो है अभी खराब ही हो और मुसलसल बारिशें हो रही है कल से अगर कहेंगे तो।
1: जी जी, मतलब इसका है कि अभी भी यात्रियों का जो इंतजार है वो अभी और ज्यादा वक्त मांगता है,
0: तवील हो रहा है उनका इंतजार बिल्कुल, क्योंकि उनको जो जज्बा है जोश से आए थे बेचारे, तो लेकिन जो मौसम ने थोड़ा सा ये गड़बड़ की, और हुकूमत को इंतजामिया को उनकी सेफ्टी को लेकर ये हुक्म जारी करना पड़ा कि यात्रा बंद रखी जाएगी, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है बहुत। ये जो तोरा जो अगर हाईवे का स्ट्रेच कहेंगे रामबन बानहाल और उधमपुर सेक्टर में, तो इनमें मुतअद्दिद मुकामात पर पत्थर गिरा है, जैसा कि हम कल भी देख चुके हैं, परसों भी देख चुके हैं, आज भी जो पत्थर गिरे हैं, और एक जो ट्रैफिक का एक जो लेन है, एक जो हमारा ऊपरी जो सड़क है, वो बिल्कुल बहुत जगहों पर बस्सियों और स्लाइड्स और ये जो शूटिंग स्टोन्स है उनकी जद में आई है, और उम्मीद है कि इसे जैसे मतलब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी मशीदी जगह जगह पर पहले ही जो खड़ी रखी गई है, स्टैंड बाई रखी गई है, यात्रा की वजह से पहले ही बहुत सारे इंतजाम किए गए थे। हाईवे अगर बंद होती तो उसे किस तरह से पूरी तौर पर खोला जाए, उसके लिए पूरा इंतजाम है, पूरा मशीदी है, सेटअप है, पूरा अफरादी कुवत है, तो उनको जो बिल्कुल तैयार ब तैयार हैं, जैसे उनको जैसे ही किसी जगह पर स्लाइडिंग होती तो एकदम मशीनरी पहुंच जाती और सफाई और का काम शुरू किया जाता है। लेकिन जब मुसलसल बारिशें होती तो ऐसे में काम करना खतरा होता है, रिस्की होता है, क्योंकि पहाड़ियों से पत्थर गिरना जो है मामूल बना हुआ, अगर कल कहेंगे हम तो करीबन 1 दर्जन के ऐसे मुकाम आते, कल शाम तक की अगर हम रिपोर्ट कहें तो 1 दर्जन ऐसे मुकाम आते उधमपुर से बानहाल के दरमियान की जहाँ पर हाईवे पर स्लाइडिंग हुई थी, पत्थर गिराए थे, यानी छोटे मोटे जो रुकावटें आई थी हाईवे पर, बेस्टर को हटाया गया था, बेस्टर को हटाया जा रहा है, तो ये सिलसिला उम्मीद है कि मजीद जो बारिशें होंगी उससे मजीद दराज होगा और मजीद स्लाइडिंग के इम्कान हैं।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तस्कीन साहब हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये सारी मालूमात पहुँचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया आपका भी।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे जो है रामबन के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब, जो वहाँ की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओ, आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारा ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही भी बता चुके थे कि अभी हम अपने संवाददाताओं से जो है जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है बनी हुई है हमारे जो डिफरेंट जो क्षेत्र है। तो रामबन के जो हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद तस्कीन साहब, उनसे अभी अभी हमारी बात हुई और इसी बीच हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब। तो जावेद मेहराब साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: जी जावेद साहब, हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त जम्मू की, अगर मौसम की बात करें, खासकर इस वक्त कैसा मौसम है वहां पर?
1: देखिए, यहाँ जम्मू संभाग में मौसम खराब होने की वजह से अभी मौसम विभाग की तरफ से बारिश की और जो है भविष्यवाणी की गई है।
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और यहाँ संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हो रही है। बनस्पत की शहर के अंदर बारिश हालांकि उतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी लगभग कोई 40 मिलीमीटर से के करीब बारिश यहाँ जम्मू में भी हुई। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ उधमपुर, रियासी, कठुआ, इन जगहों पर बारिश 100 मिलीमीटर के करीब बह चुकी है और ये सारा पानी इस वक्त जो है तवी नदी मैं जो है वो आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ जम्मू में तवी नदी का जल स्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। आसमान पर बादल, घने बादल छाए हुए हैं और कल दिन भर भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिशें जम्मू के अंदर रही, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोगों की आवाजाही और साथ साथ जो श्रद्धालुओं की आवाजाही

0: शहर के अंदर देखने को मिल रही थी
1: हाँ हाँ
0: वो अब कम हुई है,
1: जी जी
0: क्योंकि इस बारिश के दौरान ज्यादातर लोग, ज्यादातर स्थानीय लोग और ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने ट्रांजिट कैंप्स के अंदर या होटलों में ही बने रहे, क्योंकि लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तवी नदी के आसपास ये ऐलान भी करती दिखी कि

0: शहर में बारिश की वजह से सामान्य जीवन जो है वो थम चुका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बल्कि अथॉरिटीज
0: लेकिन
1: को ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं यात्रियों के हवाले से, जो कि इनकी जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए उनकी सुरक्षा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इस दौरान जो ट्रांजिट कैंप्स हैं, जो अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स हैं,
1: जी
0: वहां
1: जी
0: पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि वहां तमाम तरह के प्रबंधन और तमाम तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो वहां रुके हुए हैं, और वो भी वहां पर बिल्कुल उसी आस्था के साथ बिल्कुल बने हुए हैं, और बारिशों के बावजूद उनकी आस्था कम नहीं हुई है। वो
1: बिल्कुल
0: ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि श्रद्धालु के जैसे ही मौसम ठीक होगा, उन्हें आगे घाटी की ओर रवानगी की इजाजत मिल जाएगी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बारिश और खराब मौसम के चलते श्रद्धालु भी ये समझ रहे हैं कि अभी उसकी इजाजत मिलना जब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाते हालात क्या है, क्योंकि कल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में भी कई जगह पर भूस्खलन भी हुआ और जो स्थानीय जो ट्रैफिक है वो भी बंद रहा। इसलिए जो खबरें हैं वो चूंकि आप सोशल मीडिया पर बिल्कुल सभी को मालूम है, पहले जो ये इंफॉर्मेशन होती थी वो सिर्फ एक जगह पर ही सीमित होती थी, लेकिन अब जबकि मोबाइल की वजह से तमाम लोगों के पास मौसम विभाग की जो इंफॉर्मेशन है वो सबके पास पहुंच जाती है,
1: बिल्कुल
0: जिसकी वजह से ये आसान भी हो जाता है
1: सही
0: समझाना भी, क्योंकि जो टीमें लगी हुई हैं वो हर जगह पर अपनी तरफ से सड़कों पर, चौराहों पर, हर जगह ये ऐलान करती भी नजर आ रही है कि किसी किसी तरह से भी नदी के करीब या बारिश के दौरान बाहर आने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आराम कीजिए, अपनी अपनी जगह पर जो जहाँ
1: बिल्कुल
0: है वो वहीं पर रहे, क्योंकि
1: सही
0: स्थानीय लोगों को तो पता है कि पानी किस तरफ आता है। कई बार क्या होता है कि बारिश की वजह से हालात आपके हाथ में नहीं रहते, पानी जो है वो अपनी शक्ल खुद बना लेता है। शहरों में किस तरफ पानी आता है किस तरफ नहीं आता है ये स्थानीय लोगों को पता है, श्रद्धालुओं
1: बिल्कुल
0: पर खास तौर पर ये प्रबंधन है कि जो जहाँ है वो अपने ट्रांजिट कैंप्स के अंदर उन्हें पड़ताल के बाद ही बाहर आने दिया जाता है। किसी ने बाजार जाना है, किसी ने कोई रेस्टोरेंट या ढाबे की तरफ जाना है, या खाने कुछ अलग सा खाने की कोशिश है, हालांकि वहां सब कुछ प्रबंधन है खाने पीने की, लेकिन कई बार श्रद्धालु जो है वो पिछले 2 से 3 दिन के दौरान जो है वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं, तो कई बार बाहर आने की भी कोशिश होती है श्रद्धालुओं की, लेकिन उसकी पड़ताल के बाद ही उन्हें जाने दिया
1: जी
0: जाता है,
1: जी
0: क्योंकि ये सब जो पड़ताल और जो सुरक्षा के कदम है ये सिर्फ
1: सही
0: श्रद्धालुओं की सुरक्षा को
1: बिल्कुल
0: लेकर ही लिए जाते हैं। तो
1: सही बात है
0: बाबा बर्फानी के दर्शन में किसी तरह की कोई उस आस्था में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जब तक मौसम ठीक नहीं होता, जब तक मौसम बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर जम्मू में, जम्मू संभाग में पहाड़ी क्षेत्रों में तो ज्यादा, लेकिन शहर के अंदर भी बारिश हल्की कहीं तेज लगातार हो रही है, तो
1: जी जी
0: इसलिए अभी तक मौसम बिल्कुल खराब है, और अभी मौसम की दूसरी भविष्यवाणी भी अभी तक मौसम विभाग की तरफ से नहीं आई, हालांकि 23 तक उन्होंने ये खतरा बनाए बना रहने की बात कही है।
1: जी जी
0: तो इसलिए इसलिए यहाँ ज्यादातर आप चौक चौराहों पर जिस तरह से हम देखा करते थे तीर्थयात्रियों को, यहाँ के बाजारों में, यहाँ के पर्यटन स्थलों पर, या यहाँ के जो विभिन्न मंदिर हैं, जो हालांकि शहर पुराने शहर के अंदर है वो तो ये आगे पीछे जहाँ मंदिर, क्योंकि नजदीकी में मंदिर है जैसे रघुनाथ मंदिर है,
1: जी जी
0: या उसके अलावा पंचवतार मंदिर है, और पीरखो मंदिर की तरफ अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो बिल्कुल तभी नदी के करीब शिव स्थल है, बड़ा पुराना शिव स्थल है, वहां उन्हें मना कर दिया गया है। लेकिन जो शहर के अंदर ही जो मंदिर है उनमें पूजा अर्चनाएं करने की इजाजत है, क्योंकि सावन का महीना है, इसमें खास तौर पर जो पूजा अर्चनाएं होती हैं
1: जी जी
0: वो स्थानीय मंदिरों में भी होती है, और उसमें श्रद्धालु भी हिस्सा बराबर ले रहे हैं, लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं
1: जाहिर सी
0: को
1: बात है
0: गाइड
1: बिल्कुल
0: भी कर रहे हैं ताकि

0: इसी तरह से भटक न जाए शहर के किसी आगे पीछे किसी दूसरी जगह पर, जहां फिर पानी की वजह से या पानी आने की बाढ़ की स्थिति में उन्हें फिर परेशानी का सामना हो।
1: अगर अगर हम जावेद साहब बात करें, वहां के बेस कैंप्स में तकरीबन कितने यात्री वहां पर अभी रुके हुए हैं?
0: देखिए, यहाँ भगवती नगर बेस कैंप और तवी नदी पर जो तवी रिवर फ्रंट का जो बेस कैंप है, लगभग कोई, कल भी हमारी बात हुई थी, लगभग कोई 10,000 से ज्यादा यहाँ अंदर जो है, जो भगवती नगर के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ लगभग 4,000 से 5,000 यात्रियों के रहने की व्यवस्था है।
1: तवी
0: रिवर फ्रंट पर लगभग कोई 8,000 से 9,000 जो श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था की गई है।
1: जी।
0: जो दूसरी सभाएं हैं, जैसे अग्रवाल सभा है, महाजन सभा है, ब्राह्मण सभा है, राजपूत सभा, जो हॉल है, बड़े बड़े जो स्थल है, वहाँ पर
1: समाज सेवक
0: यात्री बने हुए हैं। उसके अलावा जो स्थानीय होटल है वहाँ पर बने हुए हैं। उसके अलावा भी यहाँ जो पर्यटन विभाग है उन्होंने भी कई जगह पर तीर्थ यात्रियों को रोकने और उनके उनके लिए प्रबंधन और व्यवस्थाएं जो की है वो भी वहाँ।
1: जावेद साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये कौन से यात्री हैं, क्या ये अभी भी जो है यात्रियों का आने का सिलसिला वहाँ तक जारी है, या फिर ये यहाँ से जो वापस जा रहे हैं वो यात्री हैं?
0: नहीं, देखिए, यहाँ जो तीर्थयात्री जो यहाँ पहुंच रहे हैं जो ट्रेनों की वजह से, हालांकि अब पूरी तरह से कम हुए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जो तीर्थ स्थान है माता वैष्णो देवी का, उनके भी तीर्थयात्री पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर रुके हुए हैं। तो उन तीर्थयात्रियों को भी, क्योंकि बाहर जो जब लोगों ने टिकटें कराई होती है एडवांस में, बाकी चीजें, जो ट्रेनें अभी चल रही है, ट्रेनें बंद तो नहीं है, तो उस वजह से जमीनी, जहाँ कठुआ, सांबा या मुख्यधार लखनपुर से आने की बात है, वहां पर तो अभी रुकी हुई है यात्रा। ज्यादा तीर्थ यात्री अभी सड़क के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनों के माध्यम से आ रहे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनें जो है वो बाजाबता उनकी एडवांस बुकिंग होती है, तो वो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ माता वैष्णो देवी के जो तीर्थयात्री है उनके लिए अलग अलग निवास स्थान अलग भी है, लेकिन तीर्थयात्री फिर जब इंतजाम हो रहा है तो चारों तरफ जब बंद है पहाड़ी क्षेत्र, तो प्रेशर शहर पर बढ़ता जा रहा है।
1: जहाँ
0: जो ये पवित्र अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु लगातार बने हुए हैं शहर में, उसी तरह से माता वैष्णो देवी के भी श्रद्धालु जो साल भर लाखों की तादाद में यहाँ जम्मू पहुंचते हैं वो भी रुके हुए हैं। तो हर कोई जो है, हर एक जो श्रद्धालु है, तीर्थ यात्री है, वो इस इंतजार में है कि कब मौसम ठीक होगा। और कई लोग जो है वो पूरी अपनी सिस्टम में आते हैं कि उन्हें हर एक चीज पता होता है कि आज हम तीर्थ यात्रा खत्म करेंगे और दूसरे दिन निकल जाएंगे। लेकिन अब जब हालात ऐसे हैं कि रुके पड़े हैं, तो फिर जो ट्रांजिट कैंप्स है वहाँ कोई ऐसा नहीं देखा जाता कि आपको रोक दिया गया, किसी और को रहने दिया गया। तीर्थयात्री फिर तीर्थयात्री है शहर और प्रशासन के लिए, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो यहाँ काम कर रही हैं इस यात्रा के लिए, उनके लिए सभी तीर्थयात्री और श्रद्धालु बराबर एक ही जगह, उन्हें उनकी सुरक्षा और उनको जो प्रबंधन और जो उनके लिए व्यवस्थाएं रखी गई है वो सबके लिए बराबर है। तो इसलिए दोनों जो स्थानों के जो तीर्थयात्री हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं। जहाँ रेलवे स्टेशन का भी एक अलग ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पर भी तीर्थयात्री रुके हुए हैं। उसके अलावा जो दूसरे ट्रांजिट कैंप है, जैसे मैंने कहा कि भगवती नगर का निवास स्थान जो है वहाँ ऑलरेडी 4,000 से 5,000 रह सकते हैं, और को आने की इजाजत नहीं है। जो है उनकी व्यवस्थाओं के लिए वहाँ प्रशासन लगी हुई है, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हुई है, स्थानीय लोग लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ जगह जगह पर जो बाजार एसोसिएशन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी पूरी तरह से प्रशासन के साथ उनका साथ भी है, और तभी ये जो ये जितना खराब मौसम के चलते उसके बावजूद भी यहाँ कोई ऐसी परेशानी अभी तक सामने नहीं आई है। खाने पीने की परेशानी नहीं है, रहने की परेशानी नहीं है, उस तरह से कोई और कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। सिर्फ मौसम के ठीक होने का इंतजार सभी कर रहे हैं, जहाँ प्रशासन कर रही

0: आशीर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और उसके साथ जो जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और लंगर जो चला रही हैं, वो सब ये इंतजार कर रहे हैं जैसे ही मौसम ठीक होगा, सड़क की हालत ठीक होगी और काठी की तरफ या माता वैष्णो देवी के द्वार की तरफ श्रद्धालुओं को इजाजत होगी तो ये सारा प्रेशर जो है जो शहर पर है अभी वो कम हो जाएगा।
1: जी जी।
0: लेकिन फिलहाल जो है व्यवस्थाएं अपनी जगह और प्रबंधन अपनी जगह बिल्कुल पूरी तरह से चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि मौसम के ठीक होने का इंतजार सभी को है और इसी बेचैनी में सभी ये आस लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द मौसम ठीक हो और उन्हें जो तीर्थ यात्री है उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन की इजाजत मिल जाए और वो अपनी यात्रा पर निकल सकें।
1: जी जी।
0: उससे पहले सरकार जो है प्रशासन जो है वो पूरी तरह से पहले स्पष्ट करना चाहती है कि जो तीर्थ यात्रा है रवाना होने से पहले उनकी सुरक्षा उनका जो बिल्कुल उनका उनको पूरी तरह से
1: बिल्कुल उनका जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल
0: बिल्कुल हाँ, वो महत्वपूर्ण है, उसी के लिए ये सारी सतर्कता बनाई गई है और जो यात्रा है वो बस इंतजार कर रही है राष्ट्रीय राजमार्ग और यहाँ के मौसम को ठीक होने का। और
1: अभी
0: मौसम विभाग ने 23 तक ये भविष्यवाणी की हुई है। आप देखना ये है कि क्या मौसम किस तरह से क्या करवट लेता है और श्रद्धालु को कितना इंतजार और करना पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्या होता है कि मौसम विभाग भी अपनी जो भविष्यवाणी है वो कई बार ठीक भी हो जाती है, कई बार मौसम का एक सिस्टम अपना होता है, कुदरत का एक सिस्टम अपना
1: बिल्कुल,
0: होता है।
1: बिल्कुल बेहतर।
0: आपको तो ज्यादा आपको घाटी के बारे में तो अभी घाटी पे भी मौसम
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल बना हुआ।
1: जी जी मैं यही बात कर रही थी, बल्कि यहाँ की जो समर वेकेशंस हैं वो भी एक्सटेंड की गई है और बहुत ही
0: बढ़ा दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही बढ़ा दी गई है क्योंकि अलग यहाँ कोई ऐसा मौसम गर्म नहीं है, लेकिन यही है कि सभी की सुरक्षा को
1: सुरक्षा वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल
0: वही एक सबसे बड़ा ये जो छुट्टी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है यहाँ जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दी है, जम्मू में भी एक्सटेंड कर दी है और कश्मीर में भी। हालांकि जम्मू में समर वेकेशन चल रही थी लेकिन वो
1: ये भी छात्रियों की जो सुरक्षा थी
0: उन्हें और एक्सटेंड कर दिया गया है।
1: बिल्कुल
0: जलस्तर जो है वो तवी नदी का वो चारों तरफ फिर उस पर खास तौर पर नजर रखे हुए है प्रशासन।
1: जी जी।
0: और इस बीच बिजली पानी का भी एक बड़ा जबरदस्त इंतजाम उसको इंतजाम को बनाए रखने के लिए भी काम हो रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बारिशों के मौसम में बिजली गुल रहती है, यहाँ ऐसी ऐसे वाकात हुए लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अधिकारी विभाग वो सब इस सिस्टम में लगे हुए हैं कि कब मौसम ठीक होगा और ये जो यात्रा है और उसके साथ साथ जो स्थानीय लोगों को जो तकलीफें हैं खराब मौसम की वजह से और जो खतरा बना हुआ है तवी नदी के जलस्तर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी अब बढ़ गया है। सिर्फ मौसम ठीक हो उसकी सारी सभी तरफ से दुआएं भी
1: जी
0: हो
1: जी
0: रही हैं।
1: हमारी भी यही प्रार्थना जी जी हमारी भी यही प्रार्थना है कि सभी यात्री जो है वो स्वस्थ और सुरक्षित रहे और मौसम जल्दी जो है अनुकूल हो और ये जो यात्रा है वो दोबारा सुचारू रूप से जो है शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया जावेद मेहराब साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओ ये थे हमारे साथ जम्मू के जो संवाददाता है जावेद मेहराब साहब, इनसे हम बात कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स नेवज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा डीटीएच के माध्यम से समाचार का वक्त हो रहा है, तो आइए पहले समाचार सुनते हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं

0: मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति हुटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ifrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत

0: स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Drauppadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system

0: मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तजारती निज़ाम के तई अपने अहद का इदा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोपजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से, जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है, इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया, जिससे माली शमूलियत को फ़रोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाज़ा होता है।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नमा निगार की एक रिपोर्ट।
2: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। यह सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट्स के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निज़ाम के शोबों में शराकत दारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैनुल अक्वामी समशी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे मुश्तरका इकदामात में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियल विजल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी, जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी और मयारी हिफ्ज़ान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तिरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम को आगे बढ़ाने के तई भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तिरा, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बी निज़ाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। आज आला ओहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कल सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनक़िद होगी। इस मीटिंग में वज़रा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारतीय बहरिया INS मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है, जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनक़िद होगी। INS मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाज़ों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के वाक़ात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है।

0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर

0: भारत ने उसूलों पर मबनी शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निज़ाम के तई अपने अज़म को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाज़ा होता है। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तजारती निज़ाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वसी तर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नर्म रवि पर मबनी गैर मुल्की रास सरमायाकारी के निज़ाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबैन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इन्हिसार शराकत दार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट UG इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहाँ दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट माहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत

0: 18 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शे सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबार ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबार की चंद अहम बैन अवी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी रबतों में नुमाया तोसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तजारती निज़ाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में खराबी के कारण यात्रा को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मौसम बेहतर होते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। श्रोताओं, हमारी यही प्रार्थना है कि सभी यात्री स्वस्थ और सुरक्षित रहें, मौसम जल्द अनुकूल हो और श्री अमरनाथ जी यात्रा दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस विशेष प्रसारण में हमारे मुख्तलिफ क्षेत्रों में जो होते हैं हमारे संवाददाता, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक साहब। तो हम इनसे वहाँ की जो स्थिति है उस के हवाले से जानकारी लेंगे। एस तारिक साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया आपका और इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात।
0: जी,
1: यात्रा के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। पहलगाम से पवित्र गुफा तथा आसपास के क्षेत्र में आज भी आकाश उग्र आलूद है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज भी कहीं मध्यम तो कहीं तेज वर्षा होने की संभावना है। रात भर रुक रुक कर वर्षा होती रही और इस समय भी मध्यम वर्षा जारी है। बिगड़ते हुए मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कुशलता के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज लगातार चौथे दिन भी आरजी रूप से निलंबित रही। जानते हैं कि ये निर्णय यात्रा प्रशासन ने भारतीय मौसम विभाग की पेशगोई के आधार पर लिया है। इसके तहत आज भी नुनवन और चंद्रवारी आधार शिविरों से किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम में सुधार आएगा या यात्रा मार्ग को सुरक्षित करार दिया जाएगा तो श्री अमरनाथ जी यात्रा को पुण्य जो शुरू कर दिया जाएगा। इस समय 8,000 से अधिक यात्रियों श्रद्धालु निर्मल आधार शिविर तथा पहलगाम के विभिन्न निजी होटलों में ठहरे हुए हैं। उन्हें भोजन, चिकित्सा, पीने के जल और दीगर आवश्यक सहूलियात प्रशासन के ओर से कराई जा रही है। मौसम अनुकूल होते ही और यात्रा मार्ग को सुरक्षित करार दिए जाने के बाद उन्हें पवित्र गुफा के ओर रवाना किया जाएगा। इधर अमरनाथ की यात्रा के दौरान अब तक 4.25 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन का अपनी लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आज रात से ही पूरी घाटी में वर्षा का क्रम जारी रहा। पहलगाम तथा चमोली का क्षेत्र में इस समय भी वर्षा हो रही है। गरज चमक के साथ वर्षा का ये दौर दिन भर वक्फे से जारी रहने की संभावना है। वातावरण धुंधला रहेगा, हवाएं हल्की रहेगी और विभिन्न दिशाओं से चलेगी। वर्षा होने के इम्कान 90% है। जबकि वातावरण में नमी की मात्रा जो देखी जा रही है इस वक्त लगभग 60% रहने की संभावना है। और पहलगाम, चंद्रवारी, शिशनाग, पंचतरणी तथा पवित्र गुफा के आसपास के क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडी हवाएं भी चल रही है और तापमान लगभग

0: सेल्सियस के बीच रहने की संभावना भी रहेगी आज दिन भर।
1: जी
0: के अनुसार आज भी गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है, इसके कारण पर्वतीय मार्गों पर दिशिता यानी कम हो सकती है और भूस्खलन तथा फिसलन का भी खतरा बना रहेगा। सभी कहा है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें
1: जी
0: और
1: जी
0: आरंभित होने की आधारित ये जो घोषणा होगी तो उसी का इंतजार करें।
1: बिल्कुल
0: पृष्ठ भाग की गश्ती टीम में पूरी यात्रा मार्ग पर तैनात है सुरक्षा बल, डिजास्टर मैनेजमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस,
1: जी
0: एजेंसी सेवाएं, सूचना विभाग, सूचना विजन संपारक विभाग, जल शक्ति विभाग, यात्रा प्रशासन तथा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा के साथ
1: जी
0: निभा रहे हैं।
1: एस तारिक साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जहलम की क्या स्थिति है, क्योंकि गाठी में भी बहुत तेज वर्षा हुई है, तो उसके अनुसार जहलम की क्या सूरत हाल है, उसका जो वाटर लेवल है वो कहाँ तक पहुंच चुका है?
0: जहलम का अभी डेंजरस लेवल से बिल्कुल नीचे है। अभी आप अगर बात तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लेके को साथ मिला के जब हम चले
1: जी जी
0: तो अच्छी नहीं है। वर्षा रात भर भी रही पूरे प्रयाग में या यात्रा मार्ग या नवरोहतक से भी हम कहेंगे तो बारिशें होती रही और जो मौसमी विभाग की तरफ से ये जो बादल फटने के भी जो आसार
1: बिल्कुल
0: जो कहने के मुताबिक आसार नजर आ रहे हैं कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र है जो जनूबी कश्मीर चूंकि पहाड़ियों से गिरा हुआ है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्रयाग है तो यहाँ भी इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं कि बादल फट सकते हैं, या क्योंकि आप देखते हैं कि पीर पंचार रेंज में भी ऐसा हुआ है जो बिल्कुल इसका कनेक्ट होता है
1: बिल्कुल
0: नेशनल हाईवे से राष्ट्रीय राजमार्ग।
1: चूंकि चूंकि नॉर्थ कश्मीर से जो हमें खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नाले सुखनाग वगैरह जो नाले हैं वहाँ पर पानी की सतह बहुत बढ़ गई है, तो फिर आखिर पर वो पानी जो है वो जहलम में पहुँच जाता है, तो इस वजह से हम ये जाने की कि कोई खतरे की कोई ऐसी सूचना तो नहीं है।
0: नहीं, ये तो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ।
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: कहा ना
1: बिल्कुल
0: राजमार्ग से अगर पीर पंजाल से लेके जहलम तक का एक जो दिशा बनती है ये एक रहता है, पहाड़ी सिलसिला भी इंटरकनेक्टेड रहता है। इस अगर कहीं से भी हो तो अलर्ट हर जगह रखा जाता है, क्योंकि कश्मीर को पहले अलर्ट में रखा गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: के बावजूद ही ये जो निर्णय लिया गया था प्रशासन के ओर से कि अधिकतर जो उनकी हिफाजत या यात्रियों की बेहतर सेहत हिफाजत के लिए पहले ही कुछ चीजें कर दी गई है, कुछ फैसले लिए गए
1: यात्री
0: निलंबित रखी जाएगी, इसलिए मुअत्तल रखा जाएगा ताकि उन्हें आने वाले खतरात से कोई परेशानी ना हो, कोई खतरा जूझना ना पड़े।
1: जी जी एस तारिक साहब, हम जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ अनंतनाग के जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पे अभी कोई यात्री रुके हुए हैं?
0: बिल्कुल, मैंने कहा ना 8,000 से ज्यादा अभी नुनवन बेस कैंप में रुके हुए हैं और उसके पीछे होटल है वहाँ पहलगाम में और अकोमोडेशन है, उन अकोमोडेशन में भी लोग रुके हुए हैं ताकि वो अपने वो बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी का बल्कि क्या अभी वो प्रशासन के वो जो नया फैसला आने वाला है के मुताबिक जब मौसम बेहतर हो जाएगा तो निर्णय लिया जाएगा और वो अब बड़ा इस वक्त फील कर रहे हैं कि हम कब बाबा के यहाँ जाएं
1: जी
0: और वहां तो उस हवाले से। लेकिन इंतजाम जब की बात करें तो उनके जब तक भी वो वहां रहेंगे इंतजाम में जरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जरा भर भी कोई फर्क नहीं आएगा, इंटैक्ट है सब कुछ। इस वक्त भी जो हम नुनवन बेस कैंप की अगर मैं बात करूं तो नुनवन बेस कैंप में 600 से जायद टेंट्स लगे हुए हैं जो विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ है और उसके बावजूद वहां बहुत सारे हटे हैं, डबल स्टोरीज हटे भी हैं। उसके की बात करें तो लगभग 13 से 14 इस वक्त वहाँ लंगर लगे हुए हैं जो हाइजेनिक है, सब कुछ उनमें इंटैक्ट है। और अगर हम इससे भी ज्यादा बात करें तो हमारे इन टेंटों में कम से कम लोअर लेवल पे 10,000 लोग भी आराम से वहाँ कई दिन गुजार सकते हैं, क्योंकि प्रशासन से आए दिन उनकी जो चेकिंग होती है रहती है कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ बिल्कुल बेहतर है भी। लेकिन जो उनमें सिर्फ जो उनकी परेशानी है जो उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो ये है कि हम बाबा के दर्शन कब करें, बस
1: बिल्कुल उनका इंतजार जो है वो अभी भी कुछ वक्त

मांगता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है ये मौसम इसमें बेहतरी आई और ये जो यात्रा है ये फिर से शुरू हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया इस तारिक साहब हमसे जुड़ने के लिए। जी श्रोताओं, ये थे हमारे एस तारिक साहब जो अनंतनाग से हमसे बात कर रहे थे। हम हमारे जो श्रीनगर के संवाददाता है इमरान नायकू साहब और गांधरबल की और भी हम रुख करेंगे कुछ ही समय में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इस खसूसी प्रसारण में, इस विशेष प्रसारण में।

गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है।

గాయంతం త్రాయతే ఇతి గాయత్రి. గాయంతం యానీ జో భీ కోయి ఇస్కా ఉచ్చారణ కర్తా హై, త్రాయతే యహ ఉస్కీ రక్షా కర్తా హై. వేదో ద్వారా ప్రదత్త ఇస్ మహాన్ మంత్ర మే అత్యధిక శక్తి హై. ఇస్కీ మహాన్తా కే దో ముఖ్య కారణ హై. పహలా ఇస్కే స్వరో మే అద్భుత శక్తిశాలీ వైబ్రేషన్స్ హై, ఔర్ దూసరా కారణ హై ఇస్మే సమాహిత గూఢ భావ. యహ మంత్ర ఏక్ ప్రార్థనా హై ఆంతరిక జ్ఞానోదయ కే లియే, జో మానవ జీవన్ కా అంతిమ ధ్యేయ హై, జిస్కే బాద్ మాంగనే కే లియే ఔర్ కుచ్ నహీ బచ్తా, జిస్కే బాద్ సారే మార్గ్ అప్నే ఆప్ ఆలోకిత హోతే హై, ఈశ్వర్ ప్రాప్తి కే ద్వార్ ఖుల్ జాతే హై. గాయత్రి మంత్ర మే తీన్ ప్రకార్ కే స్వర్ హై, అనుదాత్, ఉదాత్ एवं स्वरित. इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे. यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान. यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञाने न तो ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यंत जंतवाह. अज्ञाने न, अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है. गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है. एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान के गर्भ से जन्म कर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं. ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों पर नाजायज हैं, अवैध हैं. मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को. हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है. इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं. हम ब्रह्मांड में रहते हैं सभी जानते हैं, हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है बहुत कम लोग जानते हैं. गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है दोनों ओर, बाहरी ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी. इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में. सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें. गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना. गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से, हमारी चेतना से. अतः गायत्री मंत्र में प्रकाश की प्रार्थना है, धियो योन प्रचोदयात, अर्थात हम सभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हों. यहां एक ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि प्रार्थना एक अकेले व्यक्ति द्वारा की जा रही है, परंतु फल की प्रार्थना, ज्ञानोदय की कामना सभी के लिए की जा रही है. गायत्री मंत्र में धियो योन प्रचोदयात की कामना सर्वप्रधान है, अकेले प्रार्थी के लिए नहीं. यह प्रार्थना सभी का समावेश करके की गई है, अकेले के हित की मांग नहीं है इसमें. गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का प्रयोग है सूर्य के संदर्भ में. सूर्य आलोकित तो करता है परंतु स्वयं प्रदूषित नहीं होता. ठीक इसी तरह आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रकाश देता है,
किंतु इनमें से किसी के द्वारा चेतना का सूर्य स्वयं प्रदूषित नहीं होता। इस बात के गहन अर्थ को आत्मसात करके यदि हम अपनी चेतना के सूर्य को प्रकाशमान कर सकें तो समझिए ज्ञानोदय हुआ। ज्ञानोदय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना। हम मात्र यह शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को देखने वाला कोई और शरीर के भीतर बैठा है। हम केवल विचार, मन, भाव या बुद्धि भी नहीं हैं, क्योंकि इन सब की ओर निहारने वाला कोई और भीतर बैठा है, और यह निहारने वाला और कोई नहीं आपकी चेतना है। इस चेतना पर शरीर और मन का कोई असर नहीं पड़ता। इस चेतना को गायत्री मंत्र में ओम के प्रणव शब्द से दर्शाया गया है। यह चेतना शरीर की तीनों ही स्थितियों में भू, भुवः, सुवः, अर्थात जागृत, स्वप्नावस्था एवं निद्रावस्था में व्याप्त रहती है अपनी चौथी तुरीयावस्था को लेकर। चेतना की तुरीयावस्था स्थिति है मौन की, शून्य की। मनुष्य की चेतना इस शून्य की स्थिति के द्वारा इस मौन की स्थिति में अन्य तीन स्थितियों में व्याप्त रहती है। यही शून्य की स्थिति चेतनावस्था सूर्य के समरूप बताई गई है सवितुः शब्द द्वारा। बाहरी सूर्य की तरह यह चेतना का आंतरिक सूर्य भी दैदीप्यमान दैवी स्वरूप है, भर्गो देवस्य है। ऐसे दैदीप्यमान दैवी चेतना सूर्य पर धीम ही ध्यान लगाते हैं। मैं यह चेतना हूं जो ओम के नाम से दर्शाई गई है, जो मौन है, जो शून्य है, जो जागृत, स्वप्न एवं निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में व्याप्त है, जो बाहरी सूर्य की तरह दैवी और दैदीप्यमान है। हम ऐसे चेतना सूर्य पर धीम ही ध्यान लगाते हैं। यदि हम यह भावार्थ सच्चे अर्थों में समझ सकें तो जानिए ज्ञानोदय हुआ। गायत्री मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? यदि आप गायत्री मंत्र बाहरी सूर्य नारायण के प्रति प्रार्थना के रूप में जप रहे हैं तो इसका जाप दिन के समय ही करें, और यदि अपने आंतरिक सूर्य अपनी चेतना के प्रति ज्ञानोदय की भावना का ध्यान कर रहे हैं तो दिन या रात किसी भी समय करें। सर्वोत्तम समय है सूर्योदय का, इसके बाद सबसे उत्तम समय है सूर्यास्त के क्षण। इन दोनों में से किसी भी समय भगवान भास्कर की ओर मुख करके एक आसन पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और मध्यम स्वर में, स्वर न बहुत धीमा हो और न बहुत ऊंचा, 7 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। 7 बार, क्योंकि योग के अनुसार मानव शरीर में 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। हर चक्र का ध्यान करते हुए 1 बार गायत्री का पाठ करें। इसके उपरांत 7 बार मन ही मन में जाप करें, अपने आंतरिक सूर्य का ध्यान करते हुए, अपनी चेतना में ज्ञानोदय की जागृति की कामना लिए। इसके पश्चात मौन की, शून्य की स्थिति में कुछ देर रहें, तत्पश्चात आंखें खुलें। मित्रों, बाहरी सूर्य की आराधना के रूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, और आंतरिक सूर्य अपनी चेतना की जागृति एवं ज्ञानोदय के भाव के रूप में गायत्री मंत्र एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। सारे दिन मन में यह भाव लिए रहें कि आपके अपने भीतर आपकी चेतना एक आंतरिक सूर्य है जो साक्षी है आपके शरीर की, आपके मन की, भावनाओं एवं विचारों की, जो आलोकित कर रही है आपके भीतरी ब्रह्मांड को, ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य आलोकित कर रहा है बाहरी ब्रह्मांड को। इस भीतरी चेतना को ओम शब्द से संबोधित किया गया है, जो शून्य और मौन की अवस्था को लेकर आपके जीवन की तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न एवं निद्रा में व्याप्त है।

आसन का आप उपयोग कर रहे हों, वह आसन केवल इसी जप के लिए आप ही उपयोग करें, ताकि जिन वाइब्रेशंस की उत्पत्ति हो रही हो वो अपवित्र न हो। गायत्री मंत्र के भाव से, प्रार्थना से अपनी चेतना को हर समय आलोकित रखिए और फिर देखिए कि यह प्रकृति, यह विश्व, यह रचना कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता की हर कड़ी में उस रचनाकार का आभास है। गायत्री मंत्र की यह प्रार्थना आपका संपूर्ण समर्पण है उस रचनाकार के प्रति।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, यात्रा सिर्फ चलते कदमों का नाम नहीं बल्कि संयम, श्रद्धा और समर्पण की प्रतीक्षा भी होती है। कहते हैं ना कि हर काम अपने निर्धारित समय पर ही पूरा होता है, इसलिए धीरज रखें, विश्वास बनाए रखें। मौसम जरूर साजगार होगा और यात्रा फिर से इसी उत्साह और भक्तिभाव के साथ आगे बढ़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण हमारे साथ। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ संवाददाता हैं मुख्तलिफ क्षेत्रों में, जो हमें वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ की स्थिति जो है, उससे आगाह करते रहते हैं। तो इस बीच हम इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे गांदरबल के संवाददाता रहीम रिजवान साहब के साथ। तो रहीम रिजवान साहब से बात करते हैं। रहीम रिजवान साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। रहीम साहब, हमें बताइए कि क्या स्थिति है इस वक्त, खासकर मौसम के हवाले से अगर बात करें तो।
1: मौसम के हवाले से अगर हम अपने श्रोताओं तक बात पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल गांधरबल जिले में वर्षा हो रही है और लगातार वर्षा हो रही है, और बागतर के पूरे क्षेत्र में वर्षा हो रही है। आकाश पे घने बादल छाए हुए हैं और मौसम की स्थिति वो खराब बनी हुई है। जैसा कि मौसम विभाग के अनुसार घाटी में जो वर्षा बनी हुई है, वर्षा हो रही है तो लगातार ऐसी सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है। और इस सूरत हाल से के पेश नजर जो प्रशासन ने निर्णय लिया है कि फिलहाल यात्रा जो है उसको

अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बालटाल के क्षेत्र से यानी दुमेर कंट्रोल गेट से पवित्रा गुफा तक का पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता है, तो वर्षा होने के कारण जो यात्रा ट्रैक है उसमें फिसलन भी पैदा हो सकती है, और इस दौरान यात्रियों को पैदल या घोड़ों पे सवार होकर गुफा तक जाने का जो सफर है

0: यात्रियों को इस प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, तो वो जहाँ कहीं भी यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती थी तो वहीं पे जाके वो कमी पूरी की जाती थी। लेकिन प्रशासन ने भी भारत के पूरे क्षेत्र से लेकर पवित्र गुफा तक यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है और अभी भी वहाँ पे वो सुरक्षा बनी हुई है, क्योंकि जिला प्रशासन के अधिकारी जो है वो बिल्कुल भारत से पवित्र गुफा तक चाकू चौबंद रखे गए हैं। अभी वहाँ पे प्रशासन मौजूद है, बल्कि व्यवस्थाएं जो हैं उसमें कमी होने के बजाय इजाफा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल पेश आए, डिजास्टर हो, कुछ भी हो, तो इससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और बीकन के अधिकारी जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ NDRF, SDRF और वॉलंटियर जो है और जिले प्रशासन के मुख्तलिफ जो अन्य विभाग हैं उनके अधिकारी भी बिल्कुल चाको चौबंद रखे गए हैं। लेकिन जब प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए फिलहाल जो मौसम की स्थिति बनी हुई है, खराब मौसम की वजह से आप देखते हैं कि वादी में किस तरह सैलाब भी सूरत पैदा हुई है, बहुत सारे मकाम पर नुकसान का सामना भी करना पड़ा और गांधरबल में भी जो नाले सिंध बहता है उसका जो पानी का तेज बहाव है वो बढ़ता जा रहा है।
1: क्या खतरे की कोई जो है चेतावनी जो है वो दी गई है नाले सिंध के हवाले से अभी तक?
0: हाँ, नाले सिंध के हवाले से जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है और बार बार लाउड स्पीकर पे भी वो ऐलान करते हैं कि इसके किनारे जो है वहाँ जाके ना बैठे, उसकी तरफ ना जाए, वहाँ जाने से गुरेज करें। और इसके साथ साथ नाले सिंध से जो यहाँ वाइल पुल से ही जो बहुत ही मशहूर पुल बना है उसके आगे जो सफर है, ये नाले सिंध के दोनों अतराफ दो किनारे हैं, इतना ही सोनमर्ग तक बना हुआ है और दाएं बाएं जो भी बस्तियां हैं उनको भी ये बार बार सूचना दी जाती है कि वो अलर्ट रहे, ताकि यहाँ लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है, मिट्टी के टूटे गिराने का खतरा रहता है, जिससे खुदा न खासा इंसानी जानों का भी जिया हो सकता है या माली नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा बार बार ये सूचना दी जाती है कि वो अलर्ट रहे और पहाड़ी क्षेत्र जो है उनकी तरफ ना जाए, करने से गुरेज करें।
1: अगर मौसम मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो क्या कोई नई जो है भविष्यवाणी अभी तक सामने आई है या फिर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है?
0: बिल्कुल, मौसम विभाग बार बार ये सूचना देते रहते हैं कि 27 तक जो इन्होंने पेशन गोई की है कि मौसम खराब ही रहेगा, तो उस मौसम खराब रहने की पेशन नजर जो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, यात्रियों की सुरक्षा जो है प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा फैसला इन्होंने लिया है कि यात्रा को फिलहाल तो निलंबित कर दी गई है यात्रा, तो बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि जो बालतर क्षेत्र है या गुफा तक जो सफर है वो बिल्कुल कठिन माना जाता है, वहाँ कुछ भी हो सकता था, जो ट्रैक है वो भी खराब नहीं हुआ है क्योंकि बहुत अच्छा ट्रैक है, क्योंकि अधिकारी जो है वो बिल्कुल
1: लगातार लगे
0: हैं अभी वहाँ पे मौजूद है, लिहाजा फिलहाल सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आकाश पे घने बादल छाए हुए हैं और वर्षा हो रही है। इस वक्त भी बालतल के पूरे क्षेत्र में वर्षा हो रही है और गांधरबल में भी, घाटी के साथ साथ गांधरबल जिले में भी वर्षा हो रही है। लिहाजा मौसम में बेहतरी आते ही प्रशासन दोबारा यात्रियों को,
1: अगर हम अगर हम गांधरबल के बेस कैंपस की बात करें, चाहे वो शादीपुरा हो या मनीगाम का हो, तो क्या वहाँ पर अभी कुछ यात्री जो है वो रुके हुए हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, यात्री जो यहाँ रुके थे उनको पहले ही पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई और जो वहाँ दर्शन करके, शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस ट्रांजिट कम मनीगाम या ट्रांजिट कम शादीपुरा पहुंचे, तो उनको जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी गई है, वो सुरक्षित वापस पहुंचे। तो इस तरह आज जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल लंगर वाले हैं, शॉपकीपर हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, आला अफसरान जो है वो बिल्कुल वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात है, लेकिन इस दौरान किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है और वहाँ कोई यात्री नहीं है। फिलहाल जो है वो यह इंतजार करते हैं कि मौसम ठीक, जो मौसम है अगर बेहतरी आए तो यात्रियों को फिर से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी, तो यात्री पहले यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्हीं यात्रियों को यहाँ रोक दिया जाता है जो 5 बजे के बाद जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ पहुंचते हैं या शिवलिंगम का दर्शन करके वापस यहाँ पहुंचते हैं, तो 5 बजे के बाद इन दोनों कैंपों से किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह उन यात्रियों को रात भर ही कायम करना पड़ता है, तो जिला प्रशासन ने इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में जिस तरह बालतल बेस

0: है उसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, वो देखकर यात्री खुद भी संतुष्ट थे और यहाँ का वातावरण और मौसम की सुंदरता देखकर बिल्कुल यात्री झूम उठते थे और काफी वो यहाँ की तारीफ करते थे। वो प्रशासन के हवाले से जो व्यवस्थाएं की गई है उसको लेकर भी वो संतुष्ट थे। फिलहाल हम वही इंतजार करेंगे कि मौसम कैसा रहेगा, उसी हवाले से दोबारा ये निर्णय लिया जाएगा कि यात्रियों को कब पवित्र गुफा की ओर जाना
1: है। रिजवान साहब, चूंकि यात्रियों का जो दर्शन का जो इंतजार है वो बड़ा तवील होता जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन यात्रियों के लिए आप?
0: और यात्रियों के लिए यही मैसेज है कि जो पहले भी हमने देखा यहाँ पे है कि वो पंजीकरण के बगैर यहाँ ना आए, बाजाता तो जो यात्रा ऑनवे है क्योंकि उनकी सुरक्षा जो है वो अहम है प्रशासन के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के लिए भी है। और हम भी यही चाहते हैं, मकामी लोग भी यही चाहते हैं क्योंकि मकामी लोगों का यहाँ खास योगदान रहता है यात्रा के दौरान, क्योंकि जो वहाँ सेवादार है उनको यात्रा करने वाले एक धर्म के लोग हैं और करवाने वाले दूसरे धर्म के लोग हैं। बहुत सारे धर्म के लोग वहाँ पे इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ इनको पहुँचाते हैं सुरक्षित और वापस लाते हैं यात्रा करके, लिहाजा पंजीकरण किए बगैर यहाँ ना आए। और साथ ही जब भी आए रेनकोट वगैरह अपने साथ रखें क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ का मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है, किसी भी वक्त वर्षा हो सकती है, लिहाजा एहतियात बरतने की जरूरत है। और जिला प्रशासन ने जो उनके लिए एडवाइजरी जारी की है उस पे अमल करें और बाजाबता तौर उसके बगैर कॉन्वॉय जो वहाँ से आती है यात्रा कॉन्वॉय उन्हीं वाहनों में सफर करें, क्योंकि उन्हीं जब यात्रा कॉन्वॉय यहाँ श्रीनगर कारगिल राजमार्ग हो या राष्ट्रीय राजमार्ग हो, जो ही कॉन्वॉय यात्रा कॉन्वॉय जाती है तो उसके आगे पीछे या दाएं बाएं किसी भी प्राइवेट या सरकारी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। बाजाबता तौर जम्मू से ही पवित्र गुफा तक चारों ओर दाएं बाएं सुरक्षा कर्मी चाकू चौबंद रखे गए हैं और यात्रा को इसी दौरान तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। लिहाजा जब भी वो जम्मू कश्मीर या घाटी का सफर करना शुरू करें तो बाजाबता तौर कॉन्वॉय में आए, जो सरकारी कॉन्वॉय है उसी में आए, यात्रा कॉन्वॉय है उसी में आए और पहले पंजीकरण करें, पंजीकरण किए बगैर यहाँ ना आए क्योंकि उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ प्रशासन को भी परेशानियों का सामना।
1: बिल्कुल, ये सब तो इन्हीं की हिफाजत के लिए होता है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो हमारा मेहमान है उसको जरा सा जो है कुछ भी कुछ जो है बुरा देखना पड़े।
0: बिल्कुल, हमेशा यही कोशिश रहती है कि जिस तीर्थ यात्रा पे आए हैं वो शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए तो वो अब आसानी से गुफा तक जाए, माता टेके प्रार्थना करने, देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करें। और इसी तरीके से वो चाहते हैं कि उन्हें जो बाबा बर्फानी का दर्शन है उसे वो प्राप्त हो जाए, जिससे उनको मन को शांति मिलती है, जिस मकसद के लिए वो यहाँ आते हैं वो उन्हें पूरा हो जाए और अच्छे तरीके से और अमन सुकून से वो वापस जाए। और यहाँ जो लुत्फ उठाना चाहते हैं यहाँ की सुंदरता की तो वो भी उठाएं और यहाँ कश्मीरियों के साथ भी बातचीत करें, उनसे मिलें और उनका वातावरण भी देखें, उनका योगदान भी देखें किस तरह रहता है। में वैसे जितने भी श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल संतुष्ट है इस हवाले से, तो उन्होंने काफी तारीफ की है यहाँ की प्रशासन की भी और आम लोगों की भी, क्योंकि आम लोग भी स्वागत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा उखवत और मेहमान नवाजी जो है वो बरकरार रहे।
1: ये तो हमारी पहचान है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रहीम रिजवान साहब हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये सारी जानकारी जो है वो पहुँचाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे गांदरबल के जो संवाददाता है रहीम रिजवान साहब, जो हमें वहाँ की स्थिति के बारे में लगातार जो है हमें मालूमात देते रहते हैं। इसी बीच हम कोशिश करेंगे हमारे जो श्रीनगर के जो हमारे संवाददाता है इमरान नायकू साहब, उनसे भी हम राबता करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है श्रीनगर के हवाले से, चाहे यहाँ का मौसम हो या जो भी यहाँ पे यात्रा के हवाले से इंतजाम हैं। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस बीच जो हम बता चुके थे आपको कि हम इमरान नायकू साहब से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, तो इमरान नायकू साहब इस वक्त लाइन पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे श्रीनगर जो है यहाँ की स्थिति थी। इमरान नायकू साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: जी इमरान साहब, क्या सूरत हाल है श्रीनगर के, खासकर यहाँ का जो मौसम है इस वक्त, चूंकि हम स्टूडियो में बैठे हैं तो बाहर क्या सूरत हाल है?
1: बिल्कुल, देखिए पिछले तीन दिनों से जिस तरीके से हम अपडेट कर रहे हैं कि श्रीनगर में और पूरी वादी में बारिश हो रही है, और आज जहां तक मौसम का ताल्लुक है इस वक्त भी श्रीनगर में बारिश शुरू हो चुकी है। अगरचे अभी हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन जो मौसम विभाग है या जो वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि 72 आवर्स यानी 72 घंटे पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश होंगी, और खासकर जो कुछ हाई रीच है, पीर पंचाल वगैरह, वहां ज्यादा बारिश होंगी, और जो ये जो मैदानी इलाके हैं

0: जी
1: यहाँ पे हल्की बारिशें होंगी, लेकिन श्रीनगर में परसों हमने देखा सुबह तकरीबन 2 घंटे तेज बारिश हुई, कल हल्की सी बारिश हुई, फिर मौसम बेहतर रहा और शाम को हल्की सी बारिश हुई। आज भी हम देखें कि सुबह थोड़ा सा मौसम साजगार ही था, लेकिन अब
0: जी
1: जो है पिछले आधे घंटे से दोबारा से बारिशें शुरू हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा कि 72 घंटे तक इसी तरह से मौसम खराब रहेगा, और उम्मीद की जा रही है कि कल से पूरी वादी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में मौसम की बेहतरी होगी, मौसम साजगार होगा। लेकिन जहां तक अमरनाथ जी यात्रा का ताल्लुक है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल यात्रा जो है वो सस्पेंड कर दी गई है, लेकिन
0: बिल्कुल
1: इस सबके बावजूद भी जब तक कि मौसम बेहतर हो, यात्रियों को जो इस वक्त कश्मीर में यात्री ठहरे हैं जो अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए जाएंगे, तो वो मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंप्स में है, जैसे श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में भी बहुत सारे यात्री हैं जो यहाँ पे स्टे किए हुए हैं कि मौसम बेहतर होगा और उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन मौसम की खराबी अपनी जगह लेके अमरनाथ जी यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम अरेंजमेंट किए गए हैं, और यहाँ इस ट्रांजिट कैब में यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कंटिन्यूअसली अपने अपडेट्स में कह रहा हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के महकमे हैं और उनके जो ऑफिसर्स है या हायर जो अथॉरिटी है वो यहाँ पहुंच कर उनसे बात कर रहे हैं, ट्रांजिट कैंप में यात्रियों की खैर आफियत पूछ रहे हैं, यानी कि यात्रियों को इस फीडबैक हासिल किया जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रीनगर के पांथर चौक ट्रांजिट कैंप में गवर्नमेंट ने एक इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बनाई है कि यहाँ किसी तरह की कोई वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है।
0: जी जी।
1: और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उनके जो ऑफिशियल्स हैं या उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो 24/7 या ऑन टू हम यूं कहे कि वो यहाँ पे अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, नॉट ओनली इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट
0: जी
1: बल्कि
0: जी।
1: जितने भी हम देख रहे हैं कि ट्रांजिट कैंप से, और लगातार एलजी साहब के जो लोक भवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का जो 24/7 जो मॉनिटरिंग सेल वहां पे एस्टैब्लिश किया गया है, उस मॉनिटरिंग सेल के जरिए से पूरी यात्रा गुफा से लेके जितने भी ट्रांजिट कैंप से उनको मॉनिटर किया जा रहा है, ट्रैक्स को मॉनिटर किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता कहीं लैंडस्लाइड ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा कि यात्री भी इस पर अपना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि जो बीआरओ ने काम किया है बहुत ही अच्छे, और रीडेवलपर जो उन्होंने ट्रैक्स बनाए हैं जिसमें कोई खतरा नहीं है लैंडस्लाइड वगैरह का, और ये यात्रियों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसके अलावा यहाँ जैसे कि हम बार बार अपडेट कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर श्रीनगर में एस्टेब्लिश है, वहां से भी एचएमटी से भी पूरी इस यात्रा ट्रैक्स को, इन ट्रांजिट कैंप्स को, या जहां जहां पे यात्री रुकते हैं, यहाँ जहां जहां पर एम्प्लॉयज इसके लिए डिप्यूट किए गए उनको मॉनिटर किया जा रहा है, सो दैट किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा का दर्शन किया है। उम्मीद की जा रही है कि अल्लाह करे कि बहुत जल्द
0: मौसम
1: साफ साजगार हो
0: बिल्कुल
1: और अमरनाथ जी यात्रा दोबारा से।
0: जी इमरान साहब, जैसा कि आप बता चुके हैं कि जो श्रीनगर का जो बेस कैंप है यहाँ पर भी कई यात्री रुके हुए हैं, तो तकरीबन कितने यात्री यहाँ पे रुके हुए हैं?
1: बिल्कुल तकरीबन 500 से ज्यादा जो यात्री हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं, जिनमें मेल फीमेल यानी मर्द खवातीन है, इसमें कुछ बच्चे भी हैं और इसमें साधु साध्वी
0: आप,
1: भी हैं।
0: आपने उनसे जरूर आप राबते में होंगे, तो वहाँ पर क्या महसूस हो रहा है, कैसा महसूस, क्या मनोभाव है उन यात्रियों का जो अभी रुके हुए हैं यहाँ पर?
1: कंटिन्यूअसली हमारी यात्रियों से बात हो रही है, लेकिन जो यात्री इस वक्त यहाँ रुके हैं, जो यात्रा के लिए यहाँ पे आए हैं, ऑब्वियसली अभी चूंकि थोड़ी सी मायूसी इसको लेके है कि मौसम जब तक बेहतर हो जाए, और इसको लेके वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मौसम बेहतर हो, एडमिनिस्ट्रेशन कहे उनसे कि आप अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए जाएं, तो इस चीज को लेके जरूर उनके पास अभी थोड़ी सी जो है मायूसी है, लेकिन उम्मीद यही है कि मौसम बेहतर हो। लेकिन जो उनको यहाँ पे श्रीनगर में अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो यहाँ ऑफिशियल्स आ रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल्स उनसे बात कर रहे हैं और उनकी जो है खैर आफियत पूछ रहे हैं, तो वो चीज उनको काफी कॉन्फिडेंस और एनकरेज करता है, और वो ये भी जानते हैं कि मौसम की खराबी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है या किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये कुदरत के पास है। और बेहतर यही है कि जैसे कि प्रिडिक्शन भी है कि 72 घंटे के बाद शायद मौसम जो है बेहतर होगी, और उसमें से भी लगभग 30-32 घंटे हो चुके, शायद आज दिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कल से मौसम में बेहतर

0: यात्री होगी और यही उम्मीद है कि बहुत जल्द मौसम बेहतर हो, हमारे अमरनाथ जी यात्री इस गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो सके।
1: जी हम भी उम्मीद करते हैं कि मौसम बेहतर हो, लेकिन यहाँ पर जब हम भी स्टूडियो आ रहे थे तो श्रीनगर में बड़ा वाटर लॉगिंग का जो है मसला हो गया है, तो क्या अथॉरिटीज़ ने अभी तक कुछ इकदाम इस हवाले से उठाए, क्योंकि टूरिस्ट्स वगैरह यहाँ पर भी घूमते फिरते हैं तो उनको कहीं कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े।
0: देखिए जहाँ तक वाटर लॉगिंग का इशू है, यह एक बहुत बड़ा यहाँ श्रीनगर शहर में हमेशा से मसला रहा है, एक इशू रहा है वाटर लॉगिंग। अगर आप देखेंगे डाउन टाउन और जो श्रीनगर के सिविल लाइन से, उनमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। और चूंकि जो हमारा जो टूरिस्ट का जो फ्लो है या जो डेस्टिनेशन है, वो आपका हमारा ये निशात, शालीमार और डल लेक ज्यादा यूजली श्रीनगर में उन इलाकों में ज्यादा जो है टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन जहाँ पर लोकल पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारा शहर का डाउन टाउन के जितने भी एरियाज हैं या आप मेन हमारा जो लाल चौक है, हमारा जो पोलो व्यू मार्केट है, और इन इलाकों में भी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि शायद वाटर लॉगिंग होगी, बट अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट स्पेंड करोड़ ऑफ रुपए, जो लाखों रुपए करोड़ों के पैसे जो इसमें खर्च किए गए स्मार्ट सिटी के तहत, लेकिन इस बारिश की वजह से थोड़ा सा हमने देखा कि अब पानी जो है सड़कों पर है, गली कोचों में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों को मुश्किल हो रही है। लेकिन साथ साथ ये भी पता चले आपको कि कल श्रीनगर म्युनिसिपल के जो कमिश्नर है हसीब साहब, उन्होंने इस पर एक डिटेल्ड रिव्यू लिया है, सिटी टूर भी उन्होंने किया है, और ये भी एंश्योर किया उन्होंने, हमसे ही बात की थी और एंश्योर उन्होंने ये किया कि उनकी जो मैन मेड मशीनरी है, जो उनका उनकी जो टीम है या जो डिवाटरिंग पंप्स है, वो बिल्कुल इंस्टॉल किए गए हैं, और जितने भी हॉटस्पॉट्स है डिवाटरिंग पॉइंट्स के, वहां पे वो पंप्स लगाए गए हैं, और जहां जहां उनको लगे कि डिवाटरिंग की जरूरत है या वाटर लॉगिंग हो सकती है, वहां पे उन पंप्स को इंस्टॉल किया गया है, सो दैट आम पब्लिक के साथ साथ हमारे जो बाहर से मेहमान आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नायकू साहब हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं, ये थे हमारे जो श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू साहब, जिनसे हम यहाँ की जो है स्थिति जानने की कोशिश कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं हमारा ये विशेष प्रसारण। श्रोताओं, दर्शन की उत्साह जितनी अहम है उतनी ही अहम यात्रियों की सुरक्षा भी है। मौसम में खराबी के कारण यात्रा को वक्ती तौर पर निलंबित किया गया है, लेकिन याद रखिए कि श्रद्धा कभी नहीं रुकती। संयम, धीरज और प्रशासन की सलाह पर अमल करना ही एक सच्चे यात्री की पहचान है। आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण। इस बीच मोहम्मद तस्कीन साहब जो हैं हमारे संवाददाता, उन्होंने ये इतला हम तक पहुंचाई है कि रामबन बानिहाल सेक्टर में बारिशों का सिलसिला जारी है। शाहरा के कई मुकामात पर जो है पत्थर और मलबा गिर आया है, ताहम ट्रैफिक को दूसरी लेन से निकाला जा रहा है। इस दौरान बालतल से दर्शन के बाद वापस आने वाले श्री अमरनाथ यात्रियों की एक और कानवाई जो है वो चंद्रकूट यात्रा निवास पहुंच चुकी है, जहां नाश्ते के बाद उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में खराबी के कारण यात्रा को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मौसम में बेहतरी आते ही यात्रा फिर से शुरू होगी। इस बीच अगर आपको किसी भी सहायता दरकार हो, सहायता की ज़रूरत पड़े, तो अपने नज़दीकी सेवा केंद्र, पुलिस या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क करें, या फिर इस हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर राबिता करें, या फिर आप हमारा टोल फ्री नंबर भी डायल कर सकते हैं। श्रीनगर के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-1807199। जम्मू का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-1807198। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर, और इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में खराबी के कारण जो है अभी तक यात्रा जो है निलंबित कर दी गई है और अभी भी कोई सूचना नहीं मिली है जब कि कब यात्रा जो है उसको दोबारा शुरू किया जाए। बहरहाल तब तक इंतज़ार बनता है और कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल जो होता है वो मीठा होता है, इसलिए थोड़ा सा धीरज रखिए, सब्र रखिए, शायद इस इंतज़ार में कोई बड़ी बेहतरी छुपी हो। शायद बाबा बर्फानी के दर्शन का सबसे खूबसूरत लम्हा जो है वो आपका मुंतज़र हो। यकीन रखिए, हर

पल का इंतज़ार इस पवित्र दर्शन को और भी यादगार बना देगा। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना हम तक जो ही मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार। आप बने रहिए हमारे संग इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा यह विशेष प्रसारण। इस बीच हमारे जो संवाददाता है अनंतनाग के अस्तारिक साहब, उन्होंने यह इत्तला दी है कि इस वक्त जो है अनंतनाग में बशमूल पहलगाम जो है वहाँ पर वर्षा हो रही है। गुज़िश्ता रात और आज सुबह हुई मुसलसल वर्षा के बावजूद महकमा इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के मुताबिक अनंतनाग और श्रीनगर में दरिया जहलम का जल स्तर अगरच अभी भी अलारा मार्ग और डेंजर मार्ग से नीचे हैं, इसलिए फिलहाल किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो जनूबी कश्मीर के निवासी हैं, उनको अपील की गई है कि वो सैलाबी नालों, दाराओं और दीगर आबी रास्तों के करीब जाने से बचें और पूरी सावधानी बरतें। श्रोताओं, बरसात के मौसम में सावधानी ही सुरक्षा है, कृपया सरकारी निर्देशों पर अमल करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में मकामी प्रशासन की जारी हिदायत पर ज़रूर अमल करें। और आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में, और मैं आपके इस सफ़र में साथ हूँ, आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन एआर की आराधना चैनल पर, और इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, हम तक जो ही कोई महत्वपूर्ण सूचना पहुंचती है, हम लगातार कोशिश करते हैं वो आप तक पहुंचाने की। फिलहाल आप सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम

0: in the phone-in session today amid geopolitical concerns. The Sensex shed 556 points at 76,914, while the Nifty fell 148 points to 24,040. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर, और इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी का ये विशेष प्रसारण। हमारे साथ मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में खराबी के कारण यात्रा को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मौसम बेहतर होते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। श्रोताओं, हमारी यही प्रार्थना है कि सभी यात्री जो है वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मौसम जो है वो जल्द अनुकूल हो और श्री अमरनाथ जी यात्रा दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में और फिलहाल के लिए ये सुनते रहिए भक्ति संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, धीरज ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए अगर यात्रा वक्ती तौर पर रुकी हुई है, लेकिन हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम संयम बनाए रखें और हर हाल में जो है प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसियों के निर्देशों पर अमल करें। अभी तक मैं आपका साथ दे रही थी शाइस्ता बुखारी, और अब हमसे जुड़ चुकी हैं अनिका फराज साहिबा। आगे की नशरियात में, आगे के इस विशेष प्रसारण में आप उन्हीं के साथ सुनेंगे, तो हम स्वागत करते हैं अनिका फराज जी का, और मुझे दीजिए इजाज़त, शुभकामनाएँ।

आदाब श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अनीका रशीद और इस पूरे प्रसारण के दौरान मौसम की ताज़ा जानकारी, यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट और यात्रा दोबारा शुरू होने से संबंधित सभी आधिकारिक सूचनाएं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक आपसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थान पर ही रुकें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आइए समाचार समाप्त करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्या

0: विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. forming opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on the field protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition

0: छुट्टी और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: जय बाबा बर्फानी।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, हम लगातार अपने संवाददाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मौसम और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं एस तारिक साहब, जो हमारे संवाददाता हैं अनंतनाग से। जी एस तारिक साहब, क्या ताज़ा जानकारी है हमारे सभी श्रद्धालुओं के लिए?
4: बहुत शुक्रिया। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। पहलगाम से पवित्र गुफा तक तथा इसके आसपास के क्षेत्र में आज भी आकाश उबरालूद है, बल्कि बहुत ज्यादा बारिशें भी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज भी लगभग आज पूरा दिन जो है बारिशें हो रही होगी, उसकी संभावना है। रात भर रुक रुक के भी वर्षा होती रही और इस समय

0: भी मध्यम और कहीं तेज कहीं कम, लेकिन बारिशें हो रही है। बिगड़ते मौसम के देखते ही श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा और कुशलता की वो मद्देनजर रखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज लगातार चौथे दिन भी आर्थिक तौर पर निलंबित रही। जैसा कि आप जानते हैं कि ये निर्णय यात्रा प्रशासन ने भारतीय मौसम विभाग के पेशगोई के आधार पर लिया है। इसके तहत आज भी नुनवन और चंदनवारी आधार शोरू से किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा के ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम में सुधार आएगा और यात्रा मार्ग को सुरक्षित करार दिया जाएगा तो श्री अमरनाथ जी यात्रा को पलनी शुरू कर दिया जाएगा। इस समय 8,000 से अधिक श्रद्धालु नुनवन आधार शिविर में कयाम कर रहे हैं। उन्हें बाजाब्ता तौर पे जो प्रशासन है उनके जरिए से तमाम चीजें उपलब्ध रखी गई है। विभिन्न निजी होटलों में भी जो ठहरे हैं उनके लिए भी सारा इंतजाम किया हुआ है। उन्हें भोजन, चिकित्सा या पीने के जल और दीगर आवश्यक सहूलियतें प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। मौसम के अनुकूल होते ही और यात्रा मार्ग को सुरक्षित करार दिए जाने के बाद ही उन्हें पवित्र गुफा जाने की इजाजत दी जाएगी। इधर जो है आज जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान अब तक जो है उन्हें 4,00,000 का जो आंकड़ा था वो पूरा हो चुका है, तो उन्होंने दर्शन प्राप्त कर लिया है। तो आज रात से ही पूरे घाटी में वर्षा का क्रम जारी रहा। पहलगाम तथा इसके मलिका क्षेत्र में यानी पूरे जिले में इस समय वर्षा हो रही है। गरज चमक के साथ वर्षा का ये दौर दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और जबकि वातावरण धुंधला सा रहेगा, हवाएं हल्की रहेंगी और विभिन्न दिशाओं से चलेंगी। वर्षा होने के इम्कान 90% है जबकि वातावरण में नमी की मात्रा लगभग इस वक्त 75% की संभावना है। और आपको ये भी बता दूं कि पहलगाम, चंद्रवारी, शिशनाग और पंचतरणी तथा पवित्र गुफा के आसपास के क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है। ऊंचे वाले क्षेत्रों में ठंडी हवाएं भी चल रही है और तापमान लगभग 3 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना पहले ही तय की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी गरज चमक के साथ वर्षा होने के अनुमान बढ़ती गई है। इसके कारण जो यात्रा मार्ग है उस पे जो सिक्योरिटीज है या बीआरओ है वो सब मॉनिटर कर रहे हैं। वो अभी देख रहे हैं कि जो ट्रैक है वो किस सूरत में है, लेकिन ट्रैक को जो बताया गया है अभी तक हमें कि फिसलन अभी मौजूद है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी। अगर आप हम जहलिम की बात करें या राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो अभी तक अनंतनाग और श्रीनगर में दरियावे जहलिम का जल स्तर खतरे रेखा से और चेतावनी रेखा से बिल्कुल नीचे बना हुआ है। हालिया जो बारिश हुई है, जो वर्षा के बावजूद जल शक्ति विभाग के संचारी और बाड़ी निरंतर के अनुसार विभिन्न निगरानी केंद्रों पर जल स्तर में किसी भी असमाय बढ़ोतरी का कोई अभी संकेत नहीं मिला है। अगर दरियावे जहलिम का जल स्तर भी सुरक्षित सीमा के अंदर है, तहम जो निरंतर वर्षा के कारण श्रीनगर के निशीबी क्षेत्र जो है वहां जल बढ़ने की संपत्ति बनी हुई है। जल शक्ति विभाग ने विशेष तौर पर दक्षिणी कश्मीर के निवासियों यानी जनूबी कश्मीर का जो हमारा एरिया है जिसमें हमारा जो रवायती रूट पड़ रहा है पहलगाम, तो वहाँ उन्होंने बिल्कुल कुछ पेशनगोई की थी कि वहाँ ज्यादा बारिश होगी और अभी जो बादल फटने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ लोगों को और यात्रियों को खासकर बिल्कुल एहतियात के साथ रहने की जो मशवरा दिया है उस पर अमल करने की भी उन्होंने बिल्कुल अपनी जो बातें कही है बता दी है। हज में मामूल स्वास्थ्य विभाग की गश्ती टीमें पूरी यात्रा मार्ग में तैनात है। सुरक्षा बल, डिजास्टर मैनेजमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड एमरजेंसी सेवाएं, सूचना विभाग, सूचना वजन संपर्क विभाग, जल शक्ति विभाग, यात्रा प्रशासन तथा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से के साथ निभा रहे हैं। यात्रा नोडल अधिकारी हर रोज यात्रा से जुड़े सभी संबोधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकों के माध्यम से यात्रा की स्थिति का विस्तृत जायजा ले रहे हैं। जी,
1: आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या यात्रा दोबारा शुरू करने को लेकर कोई नया अपडेट है?
0: नहीं, अभी तो जो मौसम विभाग के जो अनुसार अभी तकरीबन उन्होंने किसी किसी जगह पे 24 का डेट दिया था, 24 तक वर्षा होगी और किसी किसी जगह पे 27 का। 27 का जो आता है वो जो हमारा आता है चिनाब वैली, उसमें आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग मेन हमारा वो द्वार है जहाँ से यात्रियों का आना जम्मू से जो भगवती नगर आधार शिविर से जो आते हैं उनके लिए वो अभी शायद असंभव नहीं है कि यात्रा बहुत जल्द शुरू होगी। मुझे लगता है अभी एक दो दिन लग जाएंगे जब तक मौसम के बारे में कोई इतला नहीं आएगी। जी
1: जी, एक दो दिन

0: लोगों तक के लिए या जितना भी वक्त है अभी जब तक ये रुका हुआ है, आप बता सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, उनके लिए यही है कि जब तक मौसमी विभाग के अनुसार जब तक कोई नया निर्णय नहीं लिया जाएगा और उसके बाद ही यात्रा प्रशासन इस बारे में फैसला लेगी, तब तक जो भी यात्री पड़े हैं, ज्यादातर जो है अभी हमारे नुनवन आधार शिविर में तकरीबन 8,000 यात्री वहाँ अभी बैठे हुए हैं, कायम कर रहे हैं। उन्हें बार बार कहा गया है, बार बार उन्हें समझाया जा रहा है, बल्कि वो बड़ा साथ भी देते हैं उस चीज को। वो समझते हैं मौसम की स्थिति क्या है और उनको कहा गया कि किसी भी चीज की आपको कमी नहीं रहेगी, जलपान सब कुछ, खान पान और जो रहने सहने के लिए जितने भी वहाँ इंतजाम है, तकरीबन 10,000 लोगों से अतिरिक्त वहाँ इंतजाम किया गया है कि आप वहाँ रुकिए और आराम से बैठिए जब तक नया कोई संदेश नहीं आएगा यात्रा के लिए। लेकिन ये जरूरी है कि वो बेचारे बड़े बड़े क्यूरियोसिटी में है कि कब यात्रा शुरू हो जाए, कब हम बाबा का दर्शन करें।
0: जी बहुत
1: लेकिन
0: बहुत
1: वो बिल्कुल कॉपरेशन में है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अगर कोई नया अपडेट आता है तो हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे।
1: जरूर जरूर,
0: शुक्रिया।
1: जरूर।
0: ये थे अनंतनाग से हमारे संवाददाता एस तारिक। हम हर नया अपडेट जो हमें मिलता रहेगा आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में बने रहिए।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
2: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिए।
2: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, हमारे साथ बने रहिए।

ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। नीट पेपर इफ्शा होने के मामले पर पार्लियामेंट में तातुल जारी है। सरकार के बहस के लिए तैयार होने के बावजूद दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। अब दोस्त शिकन INS मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है, जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारिजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आज़ादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। असम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर इफ्शा होने समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब पहले इल्तवा के बाद दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरों ने पेपर इफ्शा होने के

0: मामले पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन मेंबरों से ऐवान की कार्यवाही खुश उसलूबी से चलाने के लिए तआवुन करने को कहा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर के मामले पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज करने का मामला उठाया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर बहस के लिए तैयार है और हर एक को मिलजुल कर बहस का वक्त तय करने के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी ने आज कहा कि मरकज तलबा के साथ है और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज उसकी आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट मांसूरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कायदत वाली बीजेपी सरकार ने विकसित भारत को मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की कयादत पर मबनी तरक्की का मंत्र रखा है। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि नीट का दोबारा इम्तिहान महज 37 दिन में कराया गया और 25 दिन के अंदर नतीजों का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की और पेपर लीक के 13 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और अब ये सब जेल के अंदर हैं। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि मुलजिमों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाएगी। एहतजाज के बारे में बात करते हुए बीजेपी की एमपी ने कहा कि हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, पुरमन एहतजाज की इजाजत दी और बातचीत के दरवाजे खुले रखे। बीजेपी ने कल वजीर आजम की रिहायशगाह के दरवाजे के बाहर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के किसी इजाजत के बगैर धरना देने की मजम्मत की है और इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। नई दिल्ली में नामानिकारों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की जमहूरियत की तारीख में ये एक शर्मनाक दिन था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की रिहायशगाह की अजमत और वक़ार को जानते हुए जनाब गांधी ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा किया। भारतीय बहरिया ने आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर आईएनएस मालवन को अपने कामकाज में शामिल किया। ये माहे तर्ज का दूसरा आबदोज शिकन जंगी जहाज है। मुल्क में ही जंगी जहाज तैयार करने की भारत की सलाहियतों के सिलसिले में ये एक अहम कामयाबी है। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इस तकरीब में मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में बहरिया की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि आईएनएस मालवन मुल्क के साहिली खित्ते की बहरी सलामती में एक अहम किरदार अदा करेगा।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में क्वाड वज़राए खारिजा की मीटिंग में शिरकत की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान में भारत बहरुल काहिल को खुला और आज़ादाना रखने के अपने अज़्म और इसे मुस्तहकम करने का तहिया किया है। इन मुल्कों ने आसियान तंजीम के इत्तेहाद और उसकी मरकजी हैसियत की भी पुरजोर हिमायत की है। मीटिंग के दौरान इन मुल्कों ने आसियान के पस मंजर की हिमायत में इलाकाई चैलेंजों और मौकों पर भी तवज्जो मरकूज की। मीटिंग में इक्तसादी खुशहाली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी के हालात से निमटने के तौर तरीकों पर खासतौर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने बहरी सिक्योरिटी पर भी गौर व खौज किया। इस मौके पर डॉ जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू की। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई जो भारत अमरीका जामे आलमी कलीद शराकत दारी के लिए तरजीही शोबे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिपाइन के शहर मनीला में मशरकी एशिया चोटी मीटिंग और आसियान इलाकाई फोरम के इजलास के दौरान चीन के वजीर खारजा वांग यी से बातचीत की है। अपने इफ्तिताहिया कलिमात में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बतदरीज मामूल पर लाने की जरूरत को उजागर किया।

0: और साथ ही ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बाहमी तआवुन और इश्तराक के लिए सरहदों पर अमन सुकून का होना एक बुनियादी शर्त है। वजीर खारिजा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों को यकीन है कि बाहमी एतमाद और बाहमी मफादात की बुनियाद पर ही तआवुन पर मबनी और पायदार ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। ब्रिक्स 2026 की सदारत के एक हिस्से के तौर पर भारत ने कल चंडीगढ़ में रिवायती कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों की मीटिंग की मेज़बानी की। ये मीटिंग सेहत से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों के उस चार रोज़ा प्रोग्राम का एक हिस्सा थी जिसका अहतमाम सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत और आयुष की वजारत ने मुश्तरक तौर पर किया। मीटिंग से सबूतों पर मबनी अद्वियात के रिवायती निज़ाम को फ़रोग देने, इदारा जाती साझेदारी को मुस्तहकम करने और अफसाने सेहत के पायदार और मुस्तहकम निज़ाम में तआवुन देने के सिलसिले में ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान इश्तराक में इजाफा करने में मदद मिली। आसाम के 16 ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। खबरों में कहा गया है कि पूरी रियासत में 872 गांव सैलाब से मुतासिर हुए हैं जिसका असर 5,64,000 से ज़्यादा अफराद पर पड़ा है। 24 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके में खड़ी फसल को नुकसान पहुँचा और वहाँ पानी भर गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक अगले तीन दिन के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम के नामची ज़िले में समरदुंग के मकाम पर ज़ेरे तामीर सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव और तलाश की कार्रवाइयां आज तीसरे दिन भी जारी हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं और सुरंग के अंदर 13 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं। वो इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। नीट पेपर इफ्शा होने के मामले पर पार्लियामेंट में तातुल जारी है। सरकार के बहस के लिए तैयार होने के बावजूद दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरोहुल की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। आबदोज शिकन INS मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारिजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आज़ादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। आसाम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Stalemate continues in Parliament over NEET paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam. Red alert for heavy rainfall in Gujarat, central Maharashtra and parts of Goa for the next 2 days. An Indian shuttler Ayush Shetty enters pre-quarterfinals, defeating Indonesia's Alvi Farhan in China Open Badminton Tournament. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए

0: नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात

0: पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार, क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर

0: निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार 4th दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। खराब मौसम की वजह से यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है, यात्रा का अंत नहीं। आस्था का सफर सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखने का नाम भी है। प्रकृति का सम्मान करना भी इस पवित्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्वास बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए और निश्चिंत रहिए। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। हम लगातार अपने संवाददाताओं से भी संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि मौसम, यातायात और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा, हम तुरंत उसे आपके साथ साझा करेंगे।
3: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी

0: 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लगातार अपने संवाददाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मौसम, यातायात और अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जी। जी, क्या अपडेट्स हैं आज के मौसम के हवाले से?
1: जी, जम्मू में भी सुबह से जैसे जानकारी के मुताबिक कश्मीर में बारिशें लगातार जारी हैं। यहाँ भी सुबह से ही लगातार तेज बारिशें जारी हैं और शहर तरबतर है। यहाँ सड़कों पर, चौक चौराहों पर जलभराव हो गया है और अभी मौसम का रुख पूरी तरफ से विपरीत है और जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही मुतासर है। बाजारों में रौनक ना के बराबर है। स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी सिर्फ ट्रांजिट कैंप्स के आसपास या मंदिरों के आसपास ही नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। जो श्रद्धालु दर्शन कर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं वो अपनी ट्रेनों के इंतजार में हैं। लगातार आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रशासन घाटी से दर्शन कर श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू की तरफ रवाना कर रही है और यहाँ जो पर्यटक हैं वो पहुंच भी रहे हैं और उसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उन्हें सुरक्षा के बीच यहाँ जम्मू की तरफ भेजा जा रहा था, तो वो ट्रेनों के माध्यम से ही अपने घरों को लौटने की तैयारी में है और अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार भी करते नजर आ रहे हैं। बाकी शहर में जो है वो लगातार सुबह से बारिश भी हो रही है, कहीं तेज हो रही है, कहीं हल्की हो रही है और इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर भी बहुत सतर्कता के साथ इन श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी जाती है। स्थानीय ट्रांसपोर्ट को फिलहाल जानकारी के मुताबिक चलने की इजाजत नहीं है, लेकिन श्रद्धालु जो है वो पिछले दो दिनों से लगातार यहाँ आहिस्ता आहिस्ता पहुंच भी रहे थे। जो घाटी के में दर्शन कर चुके हैं वो अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन माध्यम सिर्फ अभी सिर्फ रेल का ही है, तो इसलिए खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर रश देखने को मिल रहा है क्योंकि जो रास्ता है जम्मू श्रीनगर पठानकोट जम्मू पठानकोट जो रास्ता है वो अभी वहाँ उस तरफ जो है जल्द बहुत जो वहाँ नदी जो नदियां हैं वहाँ जिस तरह से उज नदी है या रावी नदी है उसमें पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से कई जगह पर पठानकोट नेशनल हाईवे जो है वहां पर जलभराव हो चुका है और लोगों को फिलहाल ज्यादा तौर पर खासतौर पर श्रद्धालुओं को ये जो जम्मू पठानकोट सड़क माध्यम है उसकी तरफ जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिलहाल जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो है श्रद्धालु अपनी ट्रेनों का इंतजार जरूर कर रहे हैं। इस बीच तवी नदी का जो है यहाँ जम्मू में तवी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन

प्रशासन सभी लोगों को जिसमें श्रद्धालु स्थानीय लोग हैं नदी नालों से दूर रहने का आह्वान कर रही है ताकि कोई हादसा पेश ना आए। यहाँ सड़क पर पुलिस वैन्स एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को नदी नालों से दूर रहने का आह्वान कर रही हैं। लोगों से सख्त सतर्क रहने को भी कहा जा रहा है। जहां बारिश से पहले श्रद्धालु यहां पर चौक चौराहों या बाजारों में

0: भी अंदर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार बारिश बाहर हो रही है, जिसकी वजह से जो है श्रद्धालुओं की आवाजाही पर भी असर पड़ा है।
1: जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम का हाल इस वक्त कैसा है?
0: इस वक्त भी बारिश हो रही है, बीच में बंद हो जाती है, बीच में फिर शुरू हो जाती है, लेकिन संभाग में ओवरऑल जो मैं कह रहा हूँ, इस वजह से जो तवी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है संभाग में, जैसे रियासी, कटरा, इस तरफ जो है अपना अखनूर से आगे जो रजौरी, पहुंच, ये सारा पानी जिस तरह से अपना ये जो नदी है, सबसे बड़ी नदी जो है चिनाब की नदी, उसका जल स्तर बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, और चारों तरफ जो है बारिश इस वक्त चल रही है, और जिसकी वजह से मौसम जो है वो अभी बिल्कुल खिलाफ है किसी भी तरह की यात्रा के, और किसी भी तरह के अभी तक जो आगे पीछे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है ताकि वो पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाए। मौसम साफ होने के बाद ही अनुमति मिलेगी तीर्थ यात्रा को भी जाने की, लेकिन वो तभी स्पष्ट होगा जब मौसम साफ होगा और सड़क की हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी श्रद्धालुओं को भी घाटी की ओर जाने की, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यात्रियों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश जारी किए गए हैं?
0: देखिए, ये निर्देश तो लगातार ट्रांजिट कैंप्स के अंदर या बाहर भी बराबर वही है कि सतर्क रहें, ट्रांजिट कैंप जो जहां है उसे वहीं रहने की सलाह दी जा रही है, खास तौर पर ट्रांजिट कैंप्स के आसपास, होटलों के आसपास, होटल एसोसिएशन को भी खास तौर पर कहा गया है कि श्रद्धालुओं को, क्योंकि उन्हें स्थानीय स्थिति का उस तरह से पता नहीं है, इसलिए खास तौर पर ये कहा गया है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह से बारिश के दरमियान बाहर जाने की इजाजत ना हो। ट्रांजिट कैंप्स के बाहर भी पड़ताल के बाद ही बाहर जाने की इजाजत होती है, क्योंकि जो नदी नाले या जो स्थानीय नदी नाले, मतलब नालों का जो पानी है वो भी बारिश की वजह से तेज रफ्तार चलता है, तो किसी वजह से कोई अनहोनी ना हो उसी को देखते हुए खास तौर पर ये सख्ती से इस बात पर आह्वान किया जा रहा है कि श्रद्धालु जो है वो अपने ट्रांजिट कैंप्स और अपने होटलों में ही फिलहाल रहे जब तक जो मौसम है वो बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल साफ नहीं हो जाता।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू के यात्री निवास में श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
0: देखिए, व्यवस्थाएं जो है वो ट्रांजिट कैंप्स में चारों तरफ, चाहे वो सभाओं के ट्रांजिट कैंप्स हैं, जैसे अग्रवाल सभा है, ब्राह्मण सभा है, राजपूत सभा है, अलग अलग सभाओं को जो सरकार ने रखा है, प्रशासन ने वहां हर तरह की व्यवस्था और प्रबंधन किया हुआ है, खाने पीने की, चिकित्सा की, डॉक्टर की, हर चीज की वहाँ उपलब्धि है, और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है बारिश के दौरान वो है भोजन करने की जो व्यवस्था है, लंगर जो समितियां वो जो काम कर रही है, उस तरह की सारी व्यवस्थाएं इन ट्रांजिट कैंप्स में है, और खासतौर पर जो साफ सफाई का जो म्युनिसिपल का कॉर्पोरेशन जो इन ट्रांजिट कैंप्स के अंदर भी कर रही है और शहर भर में भी कर रही है, उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है, तो इस वजह से कोई इस तरह का कोई ह्यू एंड क्राई नहीं है कि खाने को लेकर कोई परेशानी है। जैसे मैंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर बहुत रश भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो लंगर समितियां हैं, वहाँ जो ट्रांजिट कैंप्स में जो प्रबंधन है, जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है, और प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी वहाँ ड्यूटी पर तैनात है वो हर चीज को बिल्कुल बारीकी से देखते भी है, किसी चीज की कमी ना हो, कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। सिर्फ मौसम को लेकर अभी सारी जो व्यवस्था है वो मौसम के इस बदले रुख को लेकर ही प्रशासन सतर्क है, और खास तौर पर वो ये उनका कहना है कि जैसे ही मौसम साफ होगा तो सारी व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी, और जो श्रद्धालु है उनको इजाजत भी मिलेगी घाटी में बाबा बर्फानी के दौर की तरफ निकलने की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगर कोई नया अपडेट आता है तो हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे।
0: जी, मैं सिर्फ इस बीच एक इन बिटवीन मेरे पास जो एक अपडेट आया है मैं बताऊं आपको कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, जैसे मैंने कहा था कि वहां पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से वहां उड नदी और

0: तापी नदी उफान पर है अपने, और कठुआ जिले में अलर्ट किया गया है क्योंकि वहां पर भी हमारे जो श्रद्धालुओं के कैंप है, कठुआ, विजयपुर, सांबा, वहां पर भी ट्रांजिट कैंप्स हैं और वहां पर भी ये सारी तरह की एडवाइजरी और खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है, उनकी जो सुरक्षा है उसको बिल्कुल सुनिश्चित किया जा रहा है और साथ ही स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि फिलहाल वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और बाहर नदी नालों के नजदीक जाने और बाहर सड़क पर घूमने की कोशिश ना करें जब तक बारिश रुक नहीं जाती, क्योंकि ये कठुआ का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा इस वक्त बारिश हुई है और वहां पर दो नदियां जो है उज नदी और रावी नदी ये इस वक्त उफान पर है, इसलिए खास तौर पर वहां सख्त सतर्कता बरतने की बात कही गई है और सभी को एडवाइजरी जारी कर दी गई है, खास तौर पर जो ट्रांजिट कैंप्स है वहां वहां पर भी ये सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की एडवाइजरी है और बाहर नदी नालों के नजदीक जाने पर सख्त मनाइए।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहरा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित जगह पर बने रहें और किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। हर आधिकारिक जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचती जाती रहेगी। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही मौसम साफ होगा बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। तब तक अपना हौसला बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी आस्था को मजबूत रखिए। अब इसी भक्ति और शांति के माहौल में सुनिए एक मधुर भजन। इसके बाद हम फिर लौटेंगे अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुँचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: जानपत्र भी अपने साथ रख

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वीव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि हम लगातार अपने संवाददाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मौसम, यातायात और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन कॉल पर जुड़े हैं हमारे संवाददाता रहीम रिजवान गांदरबल से। तो रहीम साहब, क्या कुछ अपडेट्स है मौसम को लेके और यातायात को लेके?
1: मौसम के हवाले से हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि गांदरबल जिले में वर्षा हो रही है। आज सुबह सवेरे से ही पहले हल्की वर्षा हो रही थी और जब भारी वर्षा हो रही है, और बालतल की बात अगर हम करेंगे तो बालतल के पूरे क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। दुमेल कंट्रोल गेट से पवित्र गुफा तक की वर्षा हो रही है, और जो ट्रैक है उसमें थोड़ी फिसलन पैदा हुई है और फिसलन के कारण वहां चलने फिरने से दिक्कतें पेश आ सकती हैं। फिलहाल तो यात्रा निलंबित कर दी गई है और किसी भी यात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो प्रशासन ने ये निर्णय उस वक्त लिया जब ठीक मौसम विभाग ने ये सूचना जताई कि घाटी में वर्षा होने की संभावना है। तो पिछले 4 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे आकाश पे घने बादल छाए हुए हैं और पूरे बालतल के क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा लगातार हो रही है। गांदरबल जिले में भी घाटी के दीगर अजला की तरह वर्षा हो रही है, और जिससे मामूल लाती जिंदगी जो है वो मुतासिर हुई है। लोग बिल्कुल घरों में ही मासूर होकर रह गए हैं, तो चलने फिरने में लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। इसी तरह अगर यात्रा के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। फिलहाल यहाँ जो बेस कैंप बालतल है वहाँ कोई यात्री आज नहीं रुका हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमारे यात्रा पड़ाव पर दो महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, यानी शादीपुरा ट्रांजिट कैंप एवं ट्रांजिट कैंप मणिगाम, और इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में अगरचे प्रशासन ने यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, लेकिन यात्री अभी इन दोनों ट्रांजिट कैंप में कोई कायम पजीर नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से जो यात्री है, किसी भी यात्री को जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर चंद यात्री यहाँ रुके थे वो पहले ही बालतल पहुंचे थे या ट्रांजिट कैंप शादीपुरा या ट्रांजिट कैंप मणिगाम पहुंचे थे, उनको एक बार दीगरे धीरे धीरे भव्यतर गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। तो इस दौरान उन्होंने शिवलिंगम पे हाजिरी दी, पूजा पाठ में हिस्सा लिया और प्रार्थना करके दुआ की और सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे।
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम में किसी तरह का सुधार देखने को मिल रहा है बालतल में?
1: अभी तक कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि घने बादल छाए हुए हैं आकाश पे और वर्षा हो रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद है। तो इस तरह कह सकते हैं, अगर दोबारा मौसम ठीक रहा तो मौसम ठीक होती ही मौसम में बेहतरी आते ही दोबारा यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल ऐसा ही मौसम बना है, वर्षा हो रही है, अभी कोई मौसम में बेहतरी देखने को नहीं मिल रही है।
0: क्या आपके पास श्रद्धालुओं के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश है?
1: श्रद्धालुओं को हम ये कहना चाहते हैं, तो वो जो ही मौसम में बेहतरी आएगी तो अब वो घाटी की तरफ रुख करेंगे, तो पहले वो पंजीकरण के करके ही आइए, क्योंकि पंजीकरण किए बगैर ही यहाँ आना बिल्कुल मुश्किल होता है, न सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी, क्योंकि वो तो कॉन्वॉय के बगैर ही आते। जो यात्रा कॉन्वॉय जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से निकलती है वो बाजबता तौर सुरक्षा के अंडर ही यहाँ आती है, और इसके लिए चारों ओर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू से श्रीनगर तक और इसके बाद श्रीनगर से कारगिल राजमार्ग जो है वहाँ चारों ओर सुरक्षा कर्मी चाको चौबंद रखे गए हैं, यानी एजेंसियों को चाको चौबंद रखा गया है। तो इसीलिए उन्हें बार बार ये निवेदन की जाती है कि वो पहले पंजीकरण करें और उसके बाद घाटी की ओर आगमन हो जाए, ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और बाजार तौर एक कॉन्वे के जरिए उन्हें बाद तक बेस कैंप पहुंचाया जाएगा। इसके बाद उनको गुफा की RFID कार्ड्स हासिल करने के बाद उन्हें पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। और बिना रजिस्ट्रेशन जो भी यहाँ यात्री आते हैं उनसे एक मैस पैदा होता है और इंतजामिया के लिए भी परेशानियां और यात्रियों को भी खुद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अगर कोई नया अपडेट आता है तो हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे।
1: जरूर।
0: ये थे गांदरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। प्रिय श्रद्धालुओं, खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है। ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है। जैसे ही मौसम ठीक होगा और स्थिति सुरक्षित होगी, यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। ऐसे समय में सबसे जरूरी है धैर्य और विश्वास। याद रखिए, हर मुश्किल सिर्फ कुछ पलों की होती है, लेकिन आस्था हमेशा मजबूत रहती है। आपका धैर्य ही इस पवित्र यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित जगह पर बने रहें और किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। मैं अनिका हूं और इस पूरे प्रसारण के दौरान मौसम की ताज़ा जानकारी और यात्रा से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट आप तक पहुंचाती रहूंगी। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही मौसम साफ होगा, बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। तब तक धैर्य बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए

0: और अपनी आस्था को मजबूत रखिए। अब इसी भक्ति और शांति के माहौल में सुनिए एक मधुर भजन। इसके बाद हम फिर लौटेंगे अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ, और हमारे जो भी संवाददाता हमसे जुड़ेंगे उनसे कुछ नए अपडेट्स भी साथ साथ ही मिलते रहेंगे।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन

0: था DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। और श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे रामबन के संवाददाता तस्कीन साहब, तो इनसे कुछ ताज़ा अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी शुक्रिया जी। हाईवे से अपडेट्स ये हैं कि आज सुबह जो बारिशें कल से ही हो रही हैं, आज सुबह से

0: की जद में आए, शूटिंग स्टोन्स की जद में आए, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बाद में रोक देना पड़ा और ट्रैफिक हुकाम ने ये नगरोटा, उधमपुर और काजीगुंड से किसी भी ट्रैफिक को हाईवे की तरफ आने की इजाजत नहीं दी है और इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इस दौरान एक टेम्पो ट्रैवलर जो यहां बानहाल से रामबन की तरफ जा रही थी, डोडा असल में ये जा रही थी, तो ये पत्थरों के गिरने की जद में आ गई है क्योंकि खतरा बना हुआ है बारिशों की वजह से हाईवे पर। यह रामसू के नजदीक गांगरू के मुकाम ये जो टेम्पो ट्रैवलर थी ये ऊपर पहाड़ी से गिर आने वाले पत्थरों की जद में आ गई, जिसकी वजह से इसमें सवार 6 में से 2 अपराध की मौत वाका हुई है, जिसमें मियां बीबी भी शामिल हैं जिनकी मौत वाका हुई है, जबकि 4 दीगर जख्मी हैं। और वाके के फौरन बाद एसएसपी रामबंद और दीगर जो हुकाम है वहां पहुंच गए हैं और रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन था वो शुरू किया गया, लेकिन इसमें 2 आदमी, एक तो मौके पर ही लुकमाजल बन चुका था जबकि दूसरे ने रामसू के अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये सभी डोडा के काश्तीगढ़ इलाके से ताल्लुक रखने वाले जख्मी और जो हलाक शुदगान 2 हैं वो भी। इस दौरान बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और जो हुकाम है ट्रैफिक हुकाम उनने लोगों से अपील की है कि वो हाईवे पर ना आए बल्कि ट्रैफिक एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें और इस तरह नेशनल हाईवे पर आकर अपने आप को मुश्किलात में न डालें। फिलहाल बारिशें मुसलसल हो रही है और जो ट्रैफिक को रोक दिया गया है, हाईवे पर ट्रैफिक बंद है, किसी भी गाड़ी को जम्मू और कश्मीर से हाईवे की तरफ आने की इजाजत नहीं है। ये सूरत हाल है अब तक और बारिशों का सिलसिला जो सुबह से ही मुसलसल जारी है, मूसलाधार बारिशें हो रही है और ये अभी तक चल रही है।
1: आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमरनाथ जी यात्रा के वाहनों की आवाजाही को लेकर क्या ताजा अपडेट्स हैं?
0: जो क्योंकि जम्मू से तो बंद है, आज तीसरे दिन भी जो अमरनाथ यात्रा थी वो मतलब फिलहाल मौतल की गई है। अलबत्ता जो बालतल और पहलगाम के रास्ते जो वापस यात्री आने वाले थे दर्शन के बाद, उन्हें निकाला गया है यहाँ से, वो जम्मू पहुंचने वाले होंगे क्योंकि वो बहुत करीबन 1:30 बजे यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ गए थे और हाईवे उस वक्त बिल्कुल ठीक था। हालांकि सुबह भी स्लाइडिंग थी लेकिन एक ही जो 2 में से 1 लेन जो ट्रैफिक की हाईवे की है वो मुतासिर हुई थी। अपर लेन जो अप जो ट्यूब जिसे कहा जाता है अप ट्यूब, वो स्लाइडिंग में आई थी, बल्कि लोअर ट्यूब जो थे उस पर ट्रैफिक चलाया गया था और अभी भी वही उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सूरत हाल है और रामबन में भी, लेकिन कुछ जगहों पर जो मजीद स्लाइडिंग हुई है उससे जो ट्रैफिक को एहतियाती तो रोक दिया गया क्योंकि पत्थर गिरने का खतरा है। अलबत्ता जो श्री अमरनाथ यात्रा जो बालतल और पहलगाम से वापस आ रहे थे वो बगैर किसी मतलब दुश्वारी के, बगैर किसी परेशानी के इस सेक्टर से पार करके जम्मू पहुंचा चाहते हैं इस वक्त।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यात्रियों और जो अन्य यात्रा करने वाले हैं उनके लिए क्या जरूरी संदेश देना चाहेंगे आप?
0: फिलहाल जो भी बाकी या कोई भी जो हाईवे पर सफर कर उस पर सख्ती से मनाही है, कोई उधमपुर से इस तरफ कश्मीर की तरफ कोई ट्रैफिक नहीं एलो है और इसी तरह काजीगुंड से जम्मू की तरफ कोई ट्रैफिक एलो नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो स्लाइडिंग का खतरा लगा रहता है, जैसे अभी हादसा हुआ, 2 अपराध इसमें मारे गए हैं, इसलिए ये एहतियाती तौर जो रिस्ट्रिक्शंस, जो बंदिश है ट्रैफिक की, जो क्लोजर है हाईवे का, वो एहतियाती तौर किया गया है ताकि कोई किसी किस्म का कोई हादसा और उन्मोहन हो जाए क्योंकि ये जो बनहाल रामबन का स्ट्रेच है ये बहुत बदनाम जमाना है पत्थरों के गिरने के लिए, स्लाइडिंग के लिए और बहुत सारी अमवात माजी में भी हुई है। हालांकि अभी हाईवे की हालत बहुत बेहतर की गई है, 4 लेन सहारा मैक्सिमम ये कन्वर्ट की गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं, बहुत सारे इलाके हैं जिनमें अभी रिस्क लगा रहता है, जैसा कि आज का ये हादसा है। ऐसे बाकी जो अमरनाथ यात्रा था वो जम्मू पहुंच चुकी है, जो कश्मीर से वापस आ रही थी, जो दर्शन करके वापस आ रहे थे वो बिल्कुल जम्मू पहुंचा चाहते हैं इस वक्त।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
0: जी, बहुत शुक्रिया।
1: ये थे मोहम्मद तस्कीन, हमारे रामबन के संवाददाता। अगर राजमार्ग की स्थिति में कोई बदलाव होता है तो हम फिर से इनके साथ संपर्क में रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। प्रिय श्रद्धालुओं, खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है। ये फैसला सिर्फ आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसे समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है धैर्य और विश्वास की। याद रखिए, प्रकृति के अपने नियम होते हैं और उनका सम्मान करना भी इस पवित्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ा सा इंतज़ार एक सुरक्षित और सफल यात्रा की ओर बढ़ने का कदम है। आपसे निवेदन है कि प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी एडवाइजरीज और निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी और आपका पवित्र सफ़र फिर से आगे बढ़ेगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी आस्था को मजबूत रखिए।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण, FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम।

101.1 मेगाहर्ट्ज न्यूज़ ऑन एआईआर के आराधना चैनल तथा डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें हमारे ईमेल पर भी आप हमें हमारे ईमेल पर भी जुड़ने के लिए आ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashwanibaltal@gmail.com और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। प्रिय श्रद्धालुओं, खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है। ये फैसला सिर्फ आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसे समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है धैर्य और विश्वास की। याद रखिए, प्रकृति के अपने नियम होते हैं और उनका सम्मान करना भी इस पवित्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ा सा इंतज़ार एक सुरक्षित और सफल यात्रा की ओर बढ़ने का कदम है। आपसे निवेदन है कि इस प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी एडवाइजरीज और निर्देशों का पालन करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी और आपका पवित्र सफ़र फिर से आगे बढ़ेगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी आस्था को मजबूत रखिए और सुनते रहिए हमारा विशेष प्रसारण।

0: 觉得呀。
1: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण, और हम लगातार अपने संवाददाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मौसम, यातायात और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अभी हमारे साथ फ़ोन कॉल पर जुड़े हैं अनंतनाग से हमारे संवाददाता इस तारिक जी। इस तारिक साहब, क्या कुछ अपडेट्स है मौसम के हवाले से?
2: बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। मौसम का जब हाल कहें तो मौसम अभी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी कोई भी जिला के पूरे क्षेत्र में कभी अभी तक कभी थक ये बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है, कोई इसमें रुकावट नहीं हो रही है
1: जी।
2: तो चले इस तरीके से हम जब यातायात की बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो थोड़ी देर बाद पहले वो कुछ किसी जगह पे पत्थर गिराए थे तो वहाँ भी यातायात के लिए जो रास्ता था बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। शायद अभी मुझे ज्यादा जानकारी अभी उस हवाले से नहीं है कि वो अभी गाड़ियां छोड़ दी गई है कि नहीं, लेकिन टाइम मांगा गया था कि फिलहाल गाड़ियों का सिलसिला भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक दिया जाए। तो इसके बाद जब कहे जहलम की बात करें तो जहलम में हल्का सा पानी में उबाव आ गया था, पानी कुछ ओवर हो गया था लेकिन खतरे के नीचे से निशान से बहुत नीचे, तो इसलिए अभी उस चीज पे कोई हमें परेशानी नहीं है। तो रही बात पहलगाम की, तो पहलगाम पूरे क्षेत्र में पहलगाम से लेके पूर्व पवित्र गुफा तक का जो जो बालाई इलाका है, पूरे बालाई इलाके में बारिशें अभी बराबर जारी है सुबह से ही, और कहीं तेज भी हो रही है कहीं कम हो रही है लेकिन बारिशें कंटिन्यू है। और जो रास्ता है खास यात्री यात्रियों के लिए तो वो रास्ता भी फिसलन भरा है, तो अभी लगता है कि शायद 2-3 दिन अभी रास्ता ठीक होने में लगेगा अगर बारिशें थम गई तो। अगर बारिशें कंटिन्यू होगी फिर भी, क्योंकि मौसमियात की वजह से जो हमें जो भविष्यवाणी हुई थी कि अभी 3 दिन तकरीबन 24-27 तक बारिशें होंगी, तो पहलगाम क्षेत्र के लिए उन्होंने 24 तक कहा था, तो इस हवाले से भी शायद 2 दिन अभी रुकना पड़ेगा। तो उसके बाद जम्मू से कब यात्रा आती है उसके लिए हमें कम से कम 27 तारीख तक वेट करना होगा मौसमियात के मुताबिक, तो या अगर मौसम ठीक रहा तो उससे पहले भी उनको अनुमति मिलेगी। तो ये चीज है, अभी मौसम खराब ही है, तो जो भी ठहरे हुए यात्री है इस वक्त हमारे पहलगाम में नुनौन आधार शिविर में, तो वो बिल्कुल आराम से वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी तमाम उनकी जो इस्तेमाल की चीजें तमाम रखी गई है, खाने पीने और बिजली जो भी चीजें जरूरत होती है वो सब उपलब्ध रखी गई है उनके लिए। जो विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ टेंट बिल्कुल इंटैक्ट है वहाँ, उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मौसम ज्यादा ठंड भी नहीं है लेकिन गर्मी खत्म हो चुकी है, लेकिन मौसम ज्यादा ठंड नहीं है कि उन्हें ज्यादा कपड़ों की भी जरूरत पड़े। हल्के से जो कपड़े हैं अगर वो वहाँ खरीदना भी चाहें तो वहाँ बिल्कुल वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं कि वो अपने वस्त्र ले सकते हैं, गर्म गर्म मरबूसात ले सकते हैं, वो भी है वहाँ। तो इस तरीके से अभी यात्रा के जो हमारे यहाँ मेहमान बैठे हैं शिव भगत बैठे हैं पहलगाम में, और उनके लिए प्रशासन बार बार उनको चेक करते रहते हैं, उनकी जो जानकारियां हासिल करते रहते हैं कि वो कहीं किस्म की कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आराम से हैं, कोई तकलीफ नहीं है उन्हें, लेकिन ये जो निजाम है कुदरत का इसके मुताबिक उन्हें रोकना पड़ेगा तब तक जब तक मौसम ठीक रहता है। जी
1: जी जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, मुझे लगता है जो इस वक्त काफी सारे यात्रियों के दिल में ये सवाल आता होगा, बार बार आता होगा, क्योंकि वो भी काफी धीरज और धैर्य से काम ले रहे हैं, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या यात्रा दोबारा शुरू होने को लेकर कोई नया अपडेट या संभावना सामने आई है?
2: नहीं, अभी सरकारी राय से कोई हमें ऐसी इतना नहीं मिली है या यात्रा प्रशासन से कोई

इशारा नहीं मिला है कि यात्रा कब जा रही, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा गया है कि मौसम जो विभाग है उनकी जो उनकी इशारे पे ही सब कुछ है कि वो कब बताएंगे कि मौसम कब ठीक होने जा रहा है। तो एक दो दिन फिर भी हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जो पूरा यात्रा ट्रैक है उसको फिसलन ना हो, उस पर बिल्कुल गियर हो या बाकी जो अन्य बाग वहाँ चेक कर रहे हैं या उसको ठीक ठाक

0: या इस पवित्र यात्रा के लिए कि वो उसका लाभ उठाए, लेकिन रिस्क को हम कभी भी नहीं उठाना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल। और
0: मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि अगर आज भी परसों के दिन अगर यात्रा छोड़ती दे तो कोई ऐसा मसला नहीं था, यात्रा जा सकती थी, लेकिन उनकी वसीतर मुफाद के लिए, उनकी वसीतर हिफाजत के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया था कि नहीं, उनके अगर इस ट्रैक में कभी बारिशें ज्यादा आ गई या बाढ़ की भी साउथ कश्मीर दक्षिण कश्मीर के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी कि बाढ़ भी आ सकता है, कहीं वो क्या कहते हैं बादल भी फट सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें उनकी हिफाजत के लिए सब कुछ निर्णय लिया गया था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अलबत्त ये जो है, ये जो हृदय की बात होती है, दिल की बात होती है कि जो यात्री यहाँ आ गए, जो शोभगत यहाँ आ गए, वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने बाबा के यहाँ उनके द्वार पहुँच कर वहाँ माथा टेके, वहाँ दर्शन करें, वहाँ अपने जो पूजन करें, तो ये सब हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन ख्वाहिशों के सामने जब परेशानियां आती है, ये चीज आती है कि जब जान की बनाती है तो तब फैसला ऐसा ही लेना पड़ता है। यही दानाई है और यही कहा गया है इनसे कि आप बिल्कुल जो प्रशासन की तरफ से जो भी हदायत होगी ट्रैक के हवाले से या आगे बढ़ने के हवाले से, तो उससे पहले कोई ऐसा ना करें। और हमें इसमें भी फख्र है कि जो हमारे शिव भगत वहां बैठे हैं वो बिल्कुल सरकारी अधिकारियों के जो हुक्म होते हैं या हदायतें होती हैं तो इसी पे बिल्कुल वो टिके हुए हैं, वो इस पे बाज़ाब्ता तौर पे खामोश है, वो कहते हैं कि बिल्कुल जब मौसम ठीक होगा अब बिल्कुल दर्शन के लिए जाएंगे।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगर कोई नया अपडेट आता है तो आपसे फिर से संपर्क करेंगे।
0: जरूर जरूर, इस वक्त आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं जो इस वक्त बारिश पहलगाम और इसके मलका क्षेत्र में हो रही है, लगभग 23.8 मिलीमीटर बारिश हो रही है, लेकिन ये एक अच्छी वैल्यू है बारिशों की, तो इसलिए हम भी अपनी तरफ से भी ये यूं कहते हैं अपने यात्री दोस्तों को, अपने भाइयों को, मित्रों को कि आप सब्र से काम लें और आपकी जान की हिफाजत के लिए हमें पहले सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद दर्शन होंगे और जब तक के लिए वो अपने शिव भक्ति में मगन रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनंतनाग से हमारे संवाददाता एस तारिक। हम हमारे जितने बाकी संवाददाता हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में बने रहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
1: श्रोताओं, इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू, इनसे आज के वेदर के हवाले से कुछ अपडेट्स सुनते हैं। जी इमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी बहुत शुक्रिया।
1: क्या कुछ अपडेट्स हैं मौसम के हवाले से?
4: बिल्कुल, देखिए सुबह से ही श्रीनगर में आज भी मौसम काफी खराब है और बारिश हो रही है, और इस वक्त भी शहर में बारिश हो रही है, ना सिर्फ श्रीनगर शहर में बल्कि पूरी वादी में इस वक्त मौसलाधार बारिशें हो रही है, और खासकर श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ तो श्रीनगर शहर में इस वक्त काफी तेज बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस खराब मौसम की वजह से अभी कुछ दिनों से अमरनाथ जी यात्रा भी सस्पेंड है, और उम्मीद की जा रही है कि जैसे कि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 10-12 घंटों के दौरान मौसम में बेहतरी आएगी, और अब हम उम्मीद यही रखते हैं कि जल्द से जल्द मौसम साफ हो जाए, मौसम ठीक हो जाए, ताकि यात्रा भी नॉर्मली रिज्यूम हो जाए, और साथ ही जो नॉर्मल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है यहाँ पे इस खराब मौसम की वजह से, उसमें भी जो है बेहतरी आ जाए। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो पहले से ही ये मॉनसून की बारिशें हो रही है, और जो पहले से ही मौसम विभाग ने इसकी प्रेडिक्शन की थी, पेशनगोई की थी,

0: और अभी बारिश हो रही है और उम्मीद यही है कि आने वाले कल तक ये मौसम बेहतर हो जाए।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या सलाह देना चाहेंगे आप, और प्रशासन के द्वारा क्या निर्देश है जो आगे आए हैं?
0: देखिए, श्रद्धालु के लिए यही हम अपडेट उनको उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी दी जा रही है, सबसे पहले वो जो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से वेदर अपडेट दिया जा रहा है उसको वो वेदर अपडेट के साथ वो रहे, वो जानकारी हासिल करें। इसके अलावा जब तक ना गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा को लेके ये कहा जाएगा कि यात्रा अब दोबारा से रिज्यूम हुई है, शुरू हुई है, मौसम बेहतर हुआ है, तो उसका भी वो इंतजार करें। और साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस या गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है उन एडवाइजरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और साथ ही जो वेबसाइट है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की, उसको वो वहाँ पे अपडेट हासिल करें। इसके अलावा जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के जो एक्स या ट्विटर हैंडल्स है उनके साथ वो कनेक्टेड रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो एक्स या ट्विटर हैंडल है उसके साथ वो कनेक्टेड रहे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अपडेट्स आ रही हैं, चाहे वो वेदर को लेके, चाहे वो यात्रा को लेके, चाहे वो बाकी चीजों को लेके, यात्रा रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या जो एडवाइजरी पेश की जा रही है, यात्री उन एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। और साथ ही खासकर गवर्नमेंट के साथ अप टू डेट रहे, फिजिकली भी कोशिश करें, और खासकर क्योंकि सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही होती है तो जितनी भी वेबसाइट्स है उनके साथ कनेक्टेड रहे ताकि वो वेबसाइट्स पर अपडेट हासिल कर सके। इसके अलावा अंटिल एंड अनलेस यात्रा रिज्यूम हो जाए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जितने यात्री अभी कश्मीर में हैं, जिनकी जिन्होंने अभी यात्रा नहीं की है मौसम खराब होने की वजह से, वो मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंप्स में रुके हैं या ठहरे हैं, खासकर श्रीनगर के इस पांता जो ट्रांजिट कैंप में कई सारे यात्री हैं जो मौसम की बेहतरी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद उनको अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, सारी जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट ने पहले से ही रखी हुई है। और हर ट्रांजिट कैंप में और श्रीनगर के पर्टिकुलरली ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्टॉल्स या फिर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, और अगर कहीं किसी भी यात्री को गवर्नमेंट की कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प चाहिए तो वो अपने फिजिकली उन हेल्प डेस्क पे जाके वो असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं, या उन्हें किसी तरह की कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो वो उनसे उस चीज को दूर कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन भी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं वेबसाइट पर, अपने एक्स हैंडल पर, तो वहां से भी अगर चाहे कोई दिक्कत हो उनको लगे उसके साथ रब्ता करें। लेकिन एज सच हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑन टो है, गवर्नमेंट की जो मैनेज मशीनरी है, जो गवर्नमेंट का जो सारा मैकेनिज्म है वो हम देख रहे हैं कि प्रोएक्टिव है, और उम्मीद यह है कि ना तो यात्रियों को कोई दिक्कत हो, और सिर्फ दुआ ये है कि मौसम जल्द से जल्द बेहतर हो जाए।
1: क्या आने वाले एक दो दिनों के लिए कोई विशेष मौसम की चेतावनी या कोई अपडेट है?
0: देखिए, आपने देखा होगा कि सिर्फ पर्टिकुलरली अमरनाथ जी यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले दो तीन दिनों से मौसम काफी खराब है, और इसकी वजह से जो अलग अलग हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा, अनंतनाग, कुलगाम, अक्रॉस द 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वेदर एडवाइजरी को लेकर कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं, और उन कंट्रोल रूम्स में उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। तो इसलिए लोगों से भी, आम लोगों से भी यही कहा गया है, टूरिस्ट से भी यही कहा गया है कि वो उन कंट्रोल रूम्स के नंबर्स पर किसी तरह की कोई असिस्टेंस हो तो उन पे राबता करें। और जो फ्लड प्रून एरियाज है या जहाँ नदी नाले हैं, जहाँ पानी ज्यादा बढ़ने का खतरा है, तो वहां जाने से अवॉइड करें, और टूरिस्ट भी उन जगहों पर ना जाएं जहाँ खतरा है कि पानी ज्यादा जो है सैलाबी सूरत हाल बनने की। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स इशू किए हैं, एडवाइजरीज इशू किए हैं, और जो उसमें कहा गया है कि डूज एंड डोंट्स, आम लोग भी और साथ ही जो टूरिस्ट हैं या बाकी जितने भी यहाँ आना चाहते हैं वो उन एडवाइजरीज को फॉलो करें जब तक कि ये मौसम खुशगवार हो जाए। और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो जे एंड के

0: ट्रैफिक पुलिस हर क्वार्टर से उनकी तरफ से हर शाम जो है ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है और उसमें लोगों से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करते हुए ही वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को में ट्रैवल करें, चाहे जम्मू से कोई कश्मीर आना चाहे या कश्मीर से कोई जम्मू जाना चाहे या देश के किसी और राज्य में, लेकिन उन ट्रैफिक एडवाइजरीज पर वो पहले उनको देखें पढ़ें और उसके बाद ही वो अपना ट्रैवल जो है वो शुरू करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।
0: शुक्रिया।
1: ये थे श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू। श्रोतालो, यकीनन अगर मौसम के बदलाव के कारण अमरनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया है, ये सिर्फ एक सावधानी का कदम है ताकि हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हर सफर में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब थोड़ा रुकना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। विश्वास रखिए, ये रुकावट कुछ देर की है लेकिन आपकी आस्था हमेशा की तरह मजबूत है। कृपया शांत रहे, धैर्य बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी हर सलाह और निर्देश का पालन करें। आपका सहयोग ही इस यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाता है। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा और आधिकारिक अनुमति मिलेगी, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और इस बात पर भरोसा रखिए कि हर नया सवेरा अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। आपका इंतज़ार ज़रूर रंग लाएगा और आप हमारे साथ बने रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
2: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
0: श्रोताओं, आइए बालतल बेस कैंप में रिकॉर्ड की गई आरती सुनते हैं।
3: सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।

ये सर पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्यकर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं,

बर्फानी जी ने माँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपने सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है, इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर भगवान।

0: कर भगवान की
1: जय,
0: धर्म के
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फाने की
1: जय हो,
0: पार्वती पते
1: हर हर हर महादेव।
2: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।

उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं, देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में

0: भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली, अंतरिक्ष की निस्सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगन गिरा सुनाई पड़ी।
1: जनी डर पहुं मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरी हूं नर बेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा, हरि हूं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
0: श्रोताओ, चलिए अयोध्या नगरी, रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्र चित ध्यान लीन होकर किसी स्थान पर बैठे
1: रहें।
2: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
3: क्यों राजन?
2: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
2: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
3: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
2: लेकिन कौशल्या,
3: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा की ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोलिए राजन, प्रगट अग्नि चरु कर लीने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी होगी। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं,
0: अरे अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन, आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सागर यहां ले आओ।
4: जो आज्ञा।
3: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
2: जो आज्ञा।
5: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर पुराने का आदेश दें।
2: ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों

0: के आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
1: हाँ, हाँ अरे पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगो मांगो बरु भय नभ पानी परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
0: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हो ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही यही कारण मुझे।

0: मानस हंसा सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा देख ही हम सो रूप परिलोचन कृपा करहु परतारित मोचन।
1: क्या अलौकिक रूप था वो उन चरणों की शोभा पद राजीव बरन नहीं जाहि मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि।
2: हे राजन आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे।

0: ने कहा, एक लाल सा बड़ उर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
1: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई।
0: तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सद्भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव।
2: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप अब।
1: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे।
2: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी,

0: रही है आप अब?
1: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे।
0: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग

0: निमिख एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनही गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कहने से चरती घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
1: वशिष्ठ जी आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
2: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए,

0: ने अंदर चलो
1: आओ। वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजउ भगवाना।
2: कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें।

0: उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला में लक्ष्मण शोभा में रखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गार के में कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी।
2: अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं। सुन हर्षी सब सखी से आनी, सी ही अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत दे आली, सुनिजे मुनि संग आई काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तह सब लोगू, अवसी देख अही देखन जोगू।

0: जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमित्तजे दिगंचल।
1: तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
0: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात।
1: जासु बिलोक की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
0: तात, आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
1: सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
0: समझा समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात।
1: लक्ष्मण, मैं असमंजस में हूँ।
0: स्वाभाविक ही है तात।
1: वह बात नहीं, सुनो। रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु थरई नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी।
0: लेकिन भगवान, विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती है।
1: पर लक्ष्मण, यह मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ? वह आदर्श जिनके लहे ही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तियमनु डीठी।
0: इस लता गुल में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने।
2: राजकुमारी, तनिक इधर आओ, यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो रहे दोनों। श्यामल गौर किशोर सुहाए।
3: सखी,
2: क्या
3: हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं?
2: कौन सच की बात है?
3: देखो ना, लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं।
2: कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु, जलत पटल बिल गाई।
3: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
4: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
2: राजकुमारी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बोप किशोर देखी कि न लेहू।
3: सकुचो मत राजकुमारी,
2: नयन उधर कर देखो ना।
5: सन्मुख आमनी सामनी दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
4: सखियो, मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
5: क्या हुआ, क्या हुआ राजकुमारी?
4: चित्त तो ठीक है ना?
5: कैसी बात पूछती है तू?
4: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी। सखी,
5: क्षोभ क्यों?
4: सुमेर पिता पन मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
5: सखियो, राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना।

0: मधुर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा उर्पुर सबही के।
1: सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर।

मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे बीते जीवन सारा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।